وسطی احد کی ویرا پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو اماں.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/fm247365

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
2: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
4: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान.
5: Like us on facebook.com/FM247365.

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
2: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज ना की जाएं तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए.

0: और बिना किसी बड़े झंझट के जरा एक कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
2: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HPL जरा बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरा आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
3: शराय तो जवाबत लागू है।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111-111-7837।
5: वाचिका वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: शौकत खानम कराची की तकलीफ
9: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: And Tabal Family Mixture Line, Umrah par jayein.
12: And HBL, Freedom Account, Jahan Khab, Wahan HBL.
13: And try all new Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
14: FM 100, 31 saal, FM 100, aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
15: Assalamu alaikum, Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम आना, वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी कुरान शरीफ की तिलावत करें. और होपफुली आपने जो है वो नमाज पढ़ी होगी फजर की नमाज. अब इतनी ज्यादा लेट नहीं है तो जरूर आप अगर सुबह उठ ही रहे हैं तो थोड़ा पहले उठ के फजर की नमाज पढ़ लें. यही नहीं है कि जी सिर्फ ऑफिस के टाइम पे ही उठना है, क्योंकि नमाज तक सवाल पूछा जाएगा ये दुनिया वाली सारी चीजें यही रह जाएंगी और तमगे नहीं मिलने हैं ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए. हाँ, लेकिन नमाज टाइम पे पढ़ ली तो दुनिया और आखिरत दोनों आपकी बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह. खैर, कुरान शरीफ का तर्जुमा हम पढ़ते हैं, उसे शुरुआत करते हैं अपने शो की. हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा. आइए पढ़ते हैं आयत नंबर 15 से. अऊज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और इब्राहिम को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो. तो तुम अल्लाह के सिवा बुतों को पूछते हो और निरा झूठ घड़ते हो. बेशक जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रोजी के कुछ मालिक नहीं. तो तुम अल्लाह के पास रिज़्क़ ढूंढो और उसकी इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बनो. इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे. तो ये आपने सुनी ये आयात. और कल हम पढ़े थे तो हज़रत नूह अलैह सलाम का जिक्र था और आज जो है हज़रत इब्राहिम अलैह सलाम का जिक्र है. और आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं कुरान शरीफ से अगर आप उसको तर्जुमे के साथ समझ के पढ़े, राइट. और हम जो है बच्चों के लिए प्ले करेंगे अभी थोड़ी देर में पक्के दोस्त का गाना.

0: अरे लाल पिक, इतना गुस्सा क्या हुआ?
1: रात से घर में लाइट नहीं आ रही है, तंग आ गया हूँ मैं।
0: टूपा टापा टिबली टम,
1: सुबह से अम्मा से कह रहा था कि फ्रेंच फ्राइज बना दो, मगर फिर से लौकी बनाती।
2: टूपा टापा डिबली डम,
1: लेकिन फिर भी अब्बा से बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मैंने अपनी लौकी की प्लेट उनकी अलमारी में रखती थी।
3: टूबा डाबा डिबली डम,
1: ये क्या है? टूबा टापा टिबली डम,
2: कुछ हुआ?
1: हाँ, मेरा गुस्सा ठंडा हो रहा है।
0: कैसे बोलो?
1: टूबा डाबा डिबली डम। अरे मेरा तो गुस्सा चला गया।
4: बस लाल बेग, अब तुमको ये याद रखना है।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
7: शराइत ज़वाबत लागू है.
8: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
10: Shaukat Khanum Karachi ki takleef
0: and
11: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
12: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
13: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
0: and
14: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा. और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप क्या एक मुस्तकिल मिजाज इंसान है. और एनजीक कह रहे हैं कि जी हाँ मैं एक मुस्तकिल मिजाज इंसान हूं क्योंकि मैं रोज मैसेज करता हूं. आई लाइक दिस काइंड ऑफ मुस्तकिल मिजाजी. इसके अलावा हमारे पास याया हमीद और मलिक वसीम इकबाल का भी मैसेज आ गया और अब्दुल रऊफ साहब जो मुझे कल से अपने ऑफिस के ही तस्वीरें भेज रहे हैं. अच्छा ऑफिस है यार आपका क्या है. अच्छा ये है मीरपुर फॉरेस्ट लॉज एंड लॉ घर. जी आप अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है तो फिर आप यहाँ आराम से रह सकते हैं. शहनाज शाहिद कह रही है जी हाँ मैं तो हूँ. और इकबाल हुसैन साहब का बड़ा अच्छा आ गया कि गुड मॉर्निंग. इतना अच्छा बनाया है इट्स वेरी नाइस ब्यूटिफुल थैंक यू. और मंजूर हुसैन मलिक भी कह रहे हैं जी हाँ. वैसे मेरे लिसनर्स वाकई में जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं वो हैं मुस्तकिल मिजाज क्योंकि फिर मुस्तकिल मिजाजी से ही वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं. बड़ी बात है वैसे सच में. एंड आई रियली डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मेरे इतने अच्छे रेगुलर लिसनर्स हैं. मगर आजकल लोग मुझे अच्छा मजे की बात है जब मैं लोगों से पूछ रही होती हूँ कि मैं रेडियो पे काम करती हूँ बड़े लाइक मैं बता रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि अच्छा रेडियो कौन सुनता है आजकल. तो मैं उनको क्या बोलूँ कि यार इतने लोग हैं यार इतनी लंबी लिस्ट है कौन लोग ये लोग सुनते हैं आप लोग सुनते हैं. और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया हुआ है उमेर अशरफ का भी. हेलो सलाम एंड गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप. फातिमा कैसी है. ओके और मुझे याद आया कि ये है हमारे हेल्थ अपडेट का टाइम तो चलते हैं हेल्थ अपडेट की तरफ.
1: हेल्थ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान.
0: ऑलराइट जी तो हम चल रहे हैं हेल्थ अपडेट की तरफ. एंड तो हेल्थ अपडेट में बच्चों के हवाले से स्पेशली बात करूंगी कि कोल्ड ड्रिंक पीना जो है वैसे भी किसी के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स में या जो जूसेस भी आप देख रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है. और शुगर अब वैसे इट्स नॉट हेल्दी. बच्चों को आप शुगर खाने से रोक नहीं सकते. मीठा बड़े हो या छोटे बड़े शौक से खाते हैं लेकिन आप मीठा खा सकते हैं लेकिन पीने में मीठा आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और खासतौर पर बच्चों के लिए. तो एक स्टडी है जो अमेरिका में कंडक्ट की गई है और तो उसके मुताबिक जो है कि पांच साल के बच्चों पे ये स्टडी की गई कि सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन पे और हायर लेवल्स ऑफ अग्रेशन अटेंशन प्रॉब्लम्स एंड विड्रॉल बिहेवियर्स हैं कि बच्चे जो है जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा होता है. वो फाइट यू नो दे फाइट अलॉट दे आर डिस्ट्रक्टिव बाई नेचर. और वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट एसोसिएशन है कोल्ड ड्रिंक्स का और अग्रेशन का. तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को और फिर आदत भी बचपन से ही पड़ जाती है कोल्ड ड्रिंक पीने की. और मैं देख रही होती हूँ बच्चे कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स रोकते ही नहीं है कहीं कहीं. मैं बता ना शादियों के अंदर जब फ्री कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं तो वो बच्चे पिए जा रहे हैं एक या दो दो के. मामा भी कहें जाओ बेटा पियो पियो एंजॉय करो. लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स खास में छोटे बच्चों के लिए इतना ज्यादा शुगर कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है बच्चों के भी. कोल्ड ड्रिंक तो खैर इज अ बिग नो नो फॉर मी. इवन इफ मैं कहीं पे भी जाती हूँ खाना क्योंकि इतना मैं बोल रही होती हूँ मैंने पढ़ा भी है इस बारे में वीडियोज भी देखी है. सो लोग मैं कहते हैं कि आप समझा मैं कहा मैं खा लेती हूँ पानी के साथ भी मैं पी लेती हूँ. बल्कि बेस्ट तो यही है कि पानी के अंदर आपने थोड़ा लीमू उसको अंदर लगाया वो आपकी ड्रिंक बन गई. और विदाउट कोल्ड ड्रिंक आई ट्राई टू ईट माई फूड. हाँ मुश्किल होती है कभी कभी जैसे बारबेक्यू या खाना ही ऐसा होता है कि हलक के नीचे नहीं जाता लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं. आप मीठा वैसे खा लें वो आपके लिए इतना डेंजरस नहीं है. आप अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और बच्चों को इसकी आदत डालेंगे इट इज वेरी वेरी बैड. अगर बच्चों को आपने कोई भी मीठी ड्रिंक देनी है तो घर में बनाइए होममेड बनाइए. मिल्क शेक्स आर गुड फॉर देम लेकिन चीनी हर चीज जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें एडिड शुगर है बहुत ज्यादा खतरनाक है. आप खुद भी इस चीज को आजमा सकते हैं. एक हफ्ते कोल्ड ड्रिंक पीजिए फिर अपना वेट चेक कीजिए. मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी ये सारी चीजें अपने आप पे भी बंदा जो है वो ट्राई करें. सैयद उमेर का मैसेज आया है. सैयद उमेर कह रहे हैं कि ऑल गुड इन फातिमा इज वेल बट वॉन्टेड टू शेयर रियल कंसर्न और मुस्तकिल मिजाजी इन चिल्ड्रन ड्यू टू वेरी हैवी यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड रील्स या हार्डली स्टिक टू एनी वन टॉपिक ऑफ एक्टिविटी दीज डेज. ये भी अच्छी सोशल मीडिया इज वेरी एडिक्टिव और कहीं कहीं इवन यूके के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अब बैन कर चुके हैं कि 16 साल की उम्र से पहले वो कोई भी बच्चे सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल کر سکتے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی آن ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹاگرام. ہاں اب ان کو ہونے کی ضرورت کیا ہے, ماں باپ وہ خود ہی بچوں کو پکڑا دیتے ہیں اپنا فون. اب سوچیں کہ کتنا ڈینجرس ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ابا کی فیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اماں کی فیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اسکرول کرتے ہیں, ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اب وہ بےچارے ہو گیا, ہمارے ملک میں تو یہ بین بھی کام نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو سوشل میڈیا تو بالکل اکاؤنٹس بنانے نہیں دیں. 14-15 سال کی لڑکیوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ, وہ بہت اپنے آپ کو فلٹر لگا کے تصویریں لگا رہی ہوتی ہیں. اٹ از ویری ویری ڈینجرس کہ آپ کے بچوں کی تصویریں آن لائن ہوں سوشل, ایون اف دے ٹین ایجرز. اور میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی ٹین ایج بچے بھی ہیں پلیز پرائیویسی موڈ ان کا چیک کریں اور شروع سے ان پہ چیک سکیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو بالکل الاؤ نہیں کریں کہ ان کا اپنا سوشل میڈیا ہو. میں تو کہہ رہی ہوں فون نہ دیں بچوں کے ہاتھ میں, پلیز ڈو ناٹ گیو یور فون ان دا ہینڈز آف چلڈرن. وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اٹس ویری ڈینجرس. اگر اپنے بچوں کو آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ پہ کم سے کم تھوڑا مانیٹر کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹی اسکرین پہ تو ہسبینڈ وائف کا اور وائف ہسبینڈ کو مانیٹر نہیں کر سکتی, تو بچوں کو تو اپنے خاک مانیٹر کرنا ہے. تو بچوں کو آپ بالکل بھی جو ہے سوشل میڈیا سے دور رکھیں. خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ممیز کو سمجھایا, ممی اور بچے سارے ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو نا او ایس ٹی بھی یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈرامے اتنا چل رہے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر کہ وہ او ایس ٹی اور اتنے سیڈ او ایس ٹی بھی بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں, وہ ریپیٹ اتنا ہوتا ہے. تو ہاں بچوں ظاہر افیکٹ ممیز نے تو یوں دے دیا ہوتا ہے, آپ بچے جاؤ تنگ کر رہے ہو, یہ لو موبائل چپ ہو جاؤ. اور میں نے تو بچوں کی ایسی ایڈکشن دیکھی ہے نا اسکرین پہ, کھانا کھانے کھلانے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں باہر تو وہ بھائی بچے بھی موبائل پہ لگے ہوئے, اماں بابا بھی موبائل پہ لگے ہوئے یا آئی پیڈ پہ لگے ہوئے, تو آپ لوگ باہر کیوں آئے, یہ چیزیں تو آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے. اور بچے رہ نہیں سکتے, دے گیٹ بورڈ سو ایزیلی. اچھے سے اچھا کھانا آپ ان کے سامنے رکھ دیں وہ نہیں کھا سکتے آپ اسکرین کے بغیر. دس از اے کائنڈ آف کنسرن. اور عجیب وہ غریب مخلوق ٹائپ بچے ہیں, یقین کریں نہ ان کی صحتیں, عجیب ہی بچے چل رہے ہیں آج کل کے, وہ تو واقعی میں نہیں سمجھ آ رہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاق کوئی پیار کوئی کسی سے بات کرنا, بس موبائل لے کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. کسی کے گھر بھی جاؤ تو بولتے ہاں بیٹا تم تو بور ہی کرو گے, وہ تم تو یہ لے کے بیٹھ جاؤ. دس از ناٹ دا رائٹ سولوشن. خیر ہم نے باتیں بہت کر لی ہیں, او مائی گاڈ ابھی گانے کا ٹائم ہے, سو لیٹس انجوائے دس ٹریک. اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا @ آج سمیا انسٹاگرام پہ. سو لیٹس شیک اٹ آف.

वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हम भी आपके साथ साथ हैं। आज हमारा टॉपिक यह है कि क्या आप एक मुस्तकिल मिजाज इंसान है, और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और सैयद उमेर का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मिस्टर वासिफ हसन का नाम लेकर मैसेज करें कि आप बहुत मुस्तकिल मिजाजी से अपनी बातों से मुकर जाते हैं, प्लीज हमें भी इसकी राह बताएं, कैसे करते हैं। अच्छा, तो वासिफ हसन साहब, आप कैसे करते हैं? रोज कहते हैं मैं उसको भूल जाऊंगा, रोज यही बात भूल जाते हैं, है ना? तो होते हैं ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो वादा खिलाफी भी कर देते हैं, ऐसी बातें हैं। तो अगर चलिए ठीक है, मिस्टर वासिफ हसन के नाम सैयद उमैर ने ये मैसेज किया, अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो आप जो है वो उसकी भी शिकायत हमसे कर, हम तो हैं यही, और खासतौर पर अपने बॉसेस की शिकायत करनी हो, कोई भी शिकायत हो आपको, रोड नहीं बन रहे हो, कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आपकी आवाज हम उठा सकते हैं। और तो हमें इंतजार है आप लोगों की जो है मैसेजेस का, लेकिन हमारे पास भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज है एचपीएल फ्रीडम अकाउंट की जानिब से। और कारोबारी अदायगियां हो या रोजाना ट्रांजैक्शंस, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान, ज्यादा स्मार्ट। अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर, अब पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में। सो दिस मैसेज वॉज बाय फ्रॉम एचबीएल। और अभी जो है हम आप लोगों के और भी मैसेजेस शामिल करेंगे। अबद अमीर के मैसेज आ रहे हैं, इकबाल हुसैन साहब के मैसेज आ रहे हैं, या हमीद कह रहे हैं यस, अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं तो आप बेचैन रहेंगे, शकी होंगे, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन एज के साथ साथ मुस्तकिल मिजाज ही आती है और फिर वरना सुकून नहीं मिलता। ठीक ठाक है वसीम इकबाल, कह रहे हैं आप हैं कि नहीं। मंजूर हुसैन मलिक कह रहे हैं, शहनाज शाहिद कह रही है वो भी हैं। आबिद अमीर कह रहे हैं आज काफी मुश्किल हो रहा था बच्चों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, यूनिवर्सिटी, और हाजिरी कम है, इतनी गर्मी है, और दोस्त की चार बेटे हैं, इतना मोटिवेट करके उन्हें स्कूल कराया, सरकारी स्कूल में पंखे नहीं है। मैं तो कहती हूँ स्कूल में एक टाइम में बच्चे लोग फौरन ऑनलाइन बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग कह रही हूँ, तौबा, ऑनलाइन स्कूलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि अब काफी लोगों के स्कूल इतने महंगे, ओवर प्राइस्ड है, और फिर उनको आना जाना कराची के अंदर कम्यूट एक बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ टाइम ट्रैवल, उसके साथ सिक्योरिटी और फ्यूल की प्राइसेस, आपको पता है कि कहां से कहां मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ी जा रही हैं। तो अब बंदा क्या करे, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो अब ऑनलाइन में आ रहे हैं। मेरी अपनी फ्रेंड्स कंसिडर कर रहे हैं कि बच्चों को खुदा कोई वो ही नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है ज्यादा पढ़ाने का बच्चों को बाहर भेज भेज के स्कूल। हालांकि आई लव द स्कूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे सोशल स्किल्स भी बहुत ज्यादा सीखते हैं, लेकिन आजकल ये दूसरे बच्चों के दोस्तों के पास भी कुछ सिखाने को नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि लोग ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ अब आ रहे हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट, बट आई थिंक इन सब केसेस इट कुड बी ट्राइड। अगर बहुत मुश्किल है बच्चों को रोजाना स्कूल भेजना, दूर है रास्ते, स्कूल बहुत दूर है, पहले लोगों के ऐसे मोहल्ले बनते थे कि प्लान्ड सिटीज, प्लान्ड, हमारे यहाँ तो कुछ भी प्लान नहीं है, यहाँ लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, तो फिर उन्होंने शहर क्या प्लान करने है, तो वो होता था कि स्कूल के पास, घर के पास ही स्कूल हैं, पार्क्स हैं, तो इस तरह का सेटअप है। लेकिन यहाँ स्पेशली इन कराची, नो, नथिंग, हम लोग हर कोई अपने ओन पे। खैर बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं, और मुस्तकिल मिजाजी पे मुझे याद आया कि एक चीज से मुझे बहुत प्यार है, और वो प्यार मतलब बड़ा मुस्तकिल मिजाज वाला प्यार है मुझे, और इस पे मुझे नसरीन पटेल जी ने भी एक वीडियो भेजी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी चाय के ऊपर, तो ये चाय का मेरा गाना है, एंड जी आई डोंट नो इफ यू लाइक चाय, मुझे ऐसा लगता है कि यू लाइक कॉफी, मोर लाइक अ कॉफी पर्सन, बट आई लव चाय। मैं प्रिटेंड भी नहीं करती हूँ कि यू नो मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है, हमें चाय और कॉफी में अगर मेरी कोई चॉइस हो तो मैं हमेशा चाय को ही प्रेफर करूंगी, लेकिन हाँ तो कैफेज में बता, कॉफी जगह पे तो चाय भी हमेशा ढाबे की ज्यादा अच्छी होती है, ये अगर आप फैंसी जगहों पे जाते हैं तो वहां पे कॉफी ही पिए, क्योंकि फैंसी जगहों में चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, चाय अपने पसंद को चाहो के ही अच्छी होती है या घर की अच्छी होती है। तो खैर इसी चाय की मोहब्बत पे है हमारा ये गाना, आइए सुनते हैं।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
7: 100 FM.
8: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL जरिए बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबत लागू है.
13: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
14: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
13: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: This program is brought to you by
1: स्वागत आनंद कराची की तकनी
0: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
5: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
6: पाकिस्तान हमसे है हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान अज़्म-ए-इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: facebook.com/fm247365 fm247365
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है

0: तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
4: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
5: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत. मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर दो और तीन पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है. रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शिनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलूचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें. रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे. मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें.
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्वागत आनंद कराची की तकलीफ एंड
7: सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
9: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
10: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
3: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
11: Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
14: वेलकम बैक. जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं भी आपके साथ साथ हूं और मुझे कहते हैं आरजे स्मीहा. आज हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी की और मुस्तकिल मिजाजी जो है क्या कहते हैं हम लोग बहुत कम लोग हैं जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अब लोगों को इस बारे में समझ आ गया है कि स्पेशलिस्ट होना और एक ही काम बार बार करना, जैसे रूटीन से लोग बोर हो जाते हैं. मैं हूं ऐसी. आई गेट बोर्ड विद रूटीन और मुझे क्या कहते हैं मुझे पढ़ाई भी एक वक्त में एक चीज नहीं करनी थी. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग तो मैं दो दो चीजें एक साथ पढ़ रही थी, बिजनेस भी और इंग्लिश लिटरेचर भी, क्योंकि मुझे कहा था यार एक चीज कैसे पढ़ सकता है कोई. यू नो लाइक आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. और अभी भी जिंदगी में ऐसा है कि मैं एक ही काम नहीं कर सकती. लाइक आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. आई हैव टू डू मतलब होस्टिंग एंड देन रेडियो देन अदर थिंग्स.

थिंग्स ऑल्सो टीचिंग. तो मेरी जिंदगी में ना एक ही जॉब करना सुबह से शाम तक जाना. तो मगर लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ही चीज में स्पेशलाइज करना इसके बड़े फायदे हैं. क्योंकि जब आप आगा खान में हॉस्पिटल में देख रही होती हूँ कि यार वो बंदे ने एक इंसान ने एक ही फील्ड में रिसर्च कर करके अपने आप को जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंचाया. और सोचिए अगर लोग नहीं रिसर्च करते, सोचिए ब्रेन की सर्जरी या कैंसर का इलाज है, तो उसमें बहुत मतलब आपको रिजल्ट बहुत आसानी से नहीं मिलते. मतलब आपको अपना दिल मारना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब कहीं कि आप इस काबिल होते हैं कि किसी दूसरी इंसान को फायदा पहुंचा सकें. और तो मुझे वो शेर इतना अच्छा लगता है अल्लामा इकबाल का कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. तो चमन में दीदावर पैदा करने के लिए आपको मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है और इंसान जल्दी उसका दिल बदल जाता है. मुस्तकिल मेहनत, अच्छी आदतें, यही आपको जो है क्या कहते हैं आगे पहुंचाती है. एनीवेज हमारी बातें जारी है, सारी आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे पास एनजीक का मैसेज आ रहे हैं. थैंक यू इन एनजीक फॉर योर मैसेजेस. इसके अलावा हमारे पास राजपूत चौहान के मैसेज थे कि गुड मॉर्निंग समिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत लोगों को आप उम्मीद दिलाती हैं और उनकी सुबह खुशगवार बनाती हैं. और इसके अलावा जो है बातों का पता ही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर, बहुत प्योर बातें करती हो. अच्छा जी, थैंक यू आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया. और क्या कहते हैं, अच्छा लगा मुझे क्या कहते हैं आपका मैसेज पढ़ के. इसके अलावा आयशा अब्दुल्ला का भी मैसेज आया हमारे पास और आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं आज ही समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे. और आपने हमें ये बताना है कि क्या आप एक मुस्तकिल मिजाज कंसिस्टेंट इंसान हैं या नहीं. और कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो आपको कंसिस्टेंटली अच्छे लगते हैं. उनमें से एक है आपदा परवीन और उनका काम जो मुझे और आपको हम सबको कंसिस्टेंटली अच्छा लगता है. अल्लाह उनको जिंदगी दे. आइए सुनते हैं ट्रैक.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef
0: and
2: Sir Sabz Nitro Foss Ko Laga Aur Jeet Ta Ja
0: and
3: Phoenix Laga Aur Bhul Ja Phoenix Laga Aur Bhul Ja
0: and
4: Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye
0: and
5: HBL Freedom Account Jahan Khab Vahan HBL
0: and
6: Try All New Vatika Shampoo Nourishes Hair Naturally
7: वेलकम बैक आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और आज हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी की आप लोगों के पैगाम है मेरे पास आमिर जफर सिद्दीकी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बीइंग कंसिस्टेंट हेल्प्स एनीवन टर्न स्मॉल डेली एक्शंस इनटू लास्टिंग सक्सेस बिल्कुल सही बात है एंड आई हैव रेड अ बुक ऑन दिस एटॉमिक हैबिट्स अ ग्रेट बुक अ मस्ट रीड उसने कहा कि छोटी छोटी आदतें आपकी कैसे आपको आपके गोल्स के करीब ले आती हैं और छोटे छोटे कहते हैं अगर आप आज थोड़े थोड़े पैसे भी सेव करेंगे और तो कल वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि मुस्तकिल मिजाज ही चाहिए अगर आप वजन पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी हैबिट्स जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें या खाने के बाद कम से कम आप कहें अपने आप से कि मैंने 5 से 10 मिनट वॉक करनी है फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को बढ़ाते जाएं तो आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स होंगी एक अगर अच्छी आदत है तो मुस्तकिल उसे करते जाएं ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि हाँ ये मुझे करना है तो रूटीन आपकी बहुत मदद करती है मुश्किल कामों से लड़ने की मुश्किल काम करने की आपको लगे जैसे मुझे लोग अक्सर कहते हैं आप सुबह कैसे उठती हैं और इतनी सुबह कैसे आ जाती हैं और मुझे यकीन अपने आप पे भी नहीं आता कि 3 साल तो हो चुके हैं इस मॉर्निंग शो को तो कंसिस्टेंटली मैं जिंदगी में शायद मैंने यही काम किया क्योंकि मुझसे जॉब वॉब भी नहीं होती कंसिस्टेंट थोड़ी दिनों में जहर लगने लगते हैं अपने बॉस तो फिर मैं कहती छोड़ो यार क्या फायदा है लेकिन यू नो कंसिस्टेंसी पेज ऑफ इन अ लॉन्ग वे स्पेशली पढ़ाई लोग पढ़ाई अपनी अधूरी छोड़ देते हैं कि यार हाँ नहीं भाई एक मसला हो गया एक पेपर में फेल हो गया और छूट गया नहीं कंसिस्टेंट होना चाहिए अपना गोल है उसको आपने अचीव करना है कितनी भी दफा फेल हो कभी ना कभी तो पास हो ही जाएंगे शादी के बाद भी बीवियों को चाहिए कि अपने शौहर की डिग्री पूरी कराएं फिलहाल कंसिस्टेंटली जो चीज बढ़ी है वो पेट्रोल की प्राइस है जिसपे और हमारा उसको देख के ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कल हमने आपको बताया था कि 380 है और अब हो गया 384 और ये पेट्रोल पंप वाले जो है अखबार में 384 लिखा हुआ है लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसमें एक का रुपया मजीद बढ़ा देते हैं और वैसे आबिद अमीन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि लोग जो है ना पेट्रोल वालों को बेचारे जो पेट्रोल डाल रहे होते हैं उनको कोस रहे होते हैं उनका कोई कसूर नहीं है उनकी तो शक्लें बेचारी ऐसे गरीब वाली गुर्बत वाली शक्लें होती हैं पेट्रोल डालने वाले लोगों की कि लगता है कि उनको तो तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने में कराची के अंदर तो यही आउटडोर काम करने वालों की शक्लें ऐसी हो जाती हैं रंग काले बेरौनक ऐसी है लेकिन खैर उनका कसूर नहीं है वो तनख्वाह वाले हैं और उनको कोई इतनी खास यहां पर मराद उनको भी नहीं मिल रही होती है उनका क्या कसूर है अमीर तो वो हो रहे होते हैं यकीन करें इतने अमीर हैं जिनके पेट्रोल पंप है उनको समझ नहीं आता कि पैसों का क्या करें खैर वजीर आजम साहब जो हैं वो उनकी खसूसी रिलीफ स्कीम है कि पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर सस्ता पहले बढ़ाते हैं फिर कहते हैं हम सस्ता कर रहे हैं मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा और 3 पहियों वाली सवारियां चलाने वाले और 800 सीसी तक गाड़ियों के मालिकान वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें तो फिर ये आप ये वाला तरीका जो है आप फॉलो कर सकते हैं या आपको मिल सकता है इंटरनेट पर आप देख सकते हैं और इस्लामाबाद में पेट्रोल पे रिलीफ का आगाज हो चुका है हाँ वहां जितनी जरूरत नहीं है वो तो वैसे मैं तो कहती हूँ इस्लामाबाद में तो गाड़ी से उतर के पैदल चलने का दिल चाहता है असल रिलीफ तो कराची को चाहिए जहां पे एक चीज इतनी दूर है तौबा तौबा यकीन करें मैं आपको बता रही हूँ साइकिल रिक्शा ले लें बेस्ट है या साइकिल चलाना शुरू कर दें पेट्रोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें मैं तो सोचती हूँ मैं भी घर से शो करना शुरू कर दूं ताकि आना जाना ही खत्म हो ये जान से मैं मार ही देंगे क्योंकि पता है कि पेट्रोल एक रगे जाए उस पर नहीं इन्होंने कोई रिलीफ देने दुख ही देना है इससे ये उस मुल्क ने दुख देखे क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं यकीन करें अगर एक चीज में कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स कंसिस्टेंटली पुअर है कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का इमेज कोई इन्हांस नहीं हुआ पुअर क्रिकेट हमारी कंसिस्टेंटली पुअर हो रही है कोई भी स्पोर्ट्स कंसिस्टेंटली पुअर है हम मतलब नेगेटिविटी में हम बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है गलती से अगर हम कुछ जीत जाते हैं तो वो हम कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते वो सब उसकी चीज के पीछे पड़ जाते हैं दिस इज काइंड ऑफ सैड कि 80 सालों में हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे तो अली रजा भी क्या कह रहे हैं अली रजा क्या कह रहे हैं जी यस इन फ्यू सिनेरियोस बता दें पैसे कमाने के बारे में लोग बड़े कंसिस्टेंट होते हैं यार पैसे बचाने के बारे में भी लोगों को कंसिस्टेंट वैसे होना चाहिए تو خیر اور بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں کنسسٹنسی کے اوپر کہ آپ زندگی کے اندر کتنے کنسسٹنٹ ہیں, اور ڈائٹ کے بارے میں لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہتے, کہتے ہاں کل سے ڈائٹ کروں گا, اور میں بھی نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کہ جہاں بریانی آ جاتی ہے تو میں بالکل بھی کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں یار بریانی کے آگے کوئی ڈائٹنگ وائٹنگ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں میں بالکل کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتی. ایک تو بریانی ہے اور دوسری گلاب جامن ہے. گلاب جامن سامنے آ گئی تو مطلب کون پاگل ہے کہ وہ ڈائٹنگ کرے گا لٹرلی. مطلب گلاب جامن ناراض ہو گئی اور پھر کبھی نہیں بنا. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتا تو کیا سین ہے یہ. اچھا جی, اور انین ارشد کے ہاکی از اے نیشنل گیم اینڈ وی لاس نیم بیڈلی آن دیٹ ٹو ایڈ ٹو اے کنسسٹنٹ پرفارمنس. کیونکہ کنسسٹنٹلی بچاروں کے اوپر ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے لاسٹ ٹائم اشتہار کے اندر ہاکی پلیئر کو دیکھا تھا؟ میں کہتی ہوں ہاکی پلیئر بھی شاید تھوڑی اچھی انگریزی بول لیں گے. ہمارے یہاں تو وہ کرکٹ کو ہی اشتہار کرکٹ, اور مجھے تو میں ہوتی تو میں اشتہاروں میں لیتی ہی نہیں کرکٹرز کو. میں کہتی ہوں بھائی یہ مطلب ان کو پیسے کمانے پہ ملنے چاہیے, اور جب یہ اچھا نہیں کھیلیں گے تو پیسے ان کے کٹنے چاہیے. جب پرفارمنس بیسڈ پیسے ملتے ہیں تبھی لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں اشتہاروں میں لگ جاتے ہیں. کرکٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی نا پیسے کماؤ. اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کرکٹ کا تعلق, اسپورٹس کا تعلق سافٹ ڈرنک سے کیا ہے. سب سے زیادہ انہیلدی چیزوں کے اشتہار میں پلیئرز آ رہے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ ان پاکستان, ایوری ویئر, وچ از اے بگ لائک ہپوکریسی. کہ کس طریقے سے اسپورٹس ایونٹس جو ہیں وہ اسپانسرڈ بائی سافٹ ڈرنکس, انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں, وچ آر ویری ویری بیڈ فار ہیلتھ. اینڈ دس ہیز بین گوئنگ آن کنسسٹنٹلی. زیادہ جو آپ چیزوں کے اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے بجٹس کے, میں آپ کو بول دوں کہ جتنا بڑا جتنا مہنگا اشتہار اتنی ہی وہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یا خیر, اور فی الحال ہم سنتے ہیں جنید جمشید کا گانا. انین ارشد, ہاؤ آر یو, ہاؤ از ایوری تھنگ؟ اینڈ خیر, اور گلاب جامن اور بریانی از ٹائم آؤٹ واٹرنگ. بریانی گلاب جامن آپ کسی بھی ٹائم پہ کھا سکتے ہیں یقین کریں, اور بریانی از لو. یوں کراچی والوں کو تو اپنے دکھ بھولنے کے لیے یہ ہیں ہماری خوشیاں, بریانی اور کیا کہتے ہیں گلاب جامن, چائے. دس از آر ہیپینس اینڈ آلسو میوزک. سو چلیں کچھ گانے سنتے ہیں, کچھ دکھ بھولتے ہیں.

0: जी आप सुन रहे थे जुनैद जमशेद की आवाज में, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, कभी ना कभी तो हमारे हालात बदल ही जाएंगे। हम दुआ कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली बस दुआ करते रहे। ये अपने इंसान को ना कभी भी दुआओं का सिलसिला ना रोकना नहीं चाहिए, अपना ईमान को पुख्ता रखना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी ना कभी तो आप पतले हो ही जाएंगे, है ना। और अनिल अर्शद कह रहे हैं कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि अनिल अर्शद को अल्लाह ताला सेहत दे और वो हेल्दी चॉइसेस अपनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अली रजा कह रहे हैं यू स्पीक द एब्सोल्यूट ट्रूथ जस्ट लाइक Nanna was trying to sell something in the drama Alif Noon. Nanna would always expose the actual truth about it. So this completely reminds me of that drama Alif Noon. वाह वाह, कभी आप मुझे शनाज शेख बना देते हैं अनकही की, कभी आप मुझे अलिफ नून का नन्ना बना देते हैं। बट डोंट यू थिंक ही इज सो क्यूट, ही इज सुपर क्यूट नन्ना, राइट? और कोई जॉब वो नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉब में जाके उसी ना फैक्ट्री के मालिक को जाके थप्पड़ लगाता था। आई एम वॉचिंग दिस बिकॉज आई सॉ 2-3 एपिसोड्स पीटीवी डिजिटल के ऊपर, पुराने ड्रामे वापस से शुरू हो गए एंड दे आर एब्सोल्यूट डिलाइट कि क्या पुराने ड्रामों का सीन था, और वो अच्छे प्रिंट में है, अच्छी कॉपी है उनकी, तो यू मस्ट ट्राई एंड थैंक यू सो मच। बट अलिफ नून वाकई में क्या कमाल, क्या हमारे क्लासिक ड्रामे थे। एनीवेज वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, अभी बहुत थोड़ा टाइम है, और मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बता सकते हैं कि आप कितने मुस्तकिल मिजाज या कंसिस्टेंट इंसान हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत, और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
10: शराइत ज़वाबत लागू है।
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।
13: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
14: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
14: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص، عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ نیپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
15: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
16: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
17: का वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
18: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں، ضرور آئیے گا۔
19: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
20: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki takleef, and Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja, and
21: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
20: and
14: Tabal family mixture laye umrah par jaye,
20: and
4: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL,
20: and
22: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
23: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
1: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
2: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
5: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
9: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है. HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
10: HBL जरिए बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
11: शराइत ज़वाबत लागू है.
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: Root FM, your location for maximum music.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL. This program was brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
1: And
3: Sir Sabs Nitro Force Ko Laga, Aur Jeet Taja.
1: And
4: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
1: And
5: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye.
1: And
6: HBL Freedom Account, Jahan Khab, Vahan HBL.
1: And
7: try all new Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
8: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
9: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
10: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
8: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
11: خالص اجزا بھروسےمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
13: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है.
14: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
15: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं.
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: तपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 0211111827 25 पर व्हाट्सएप करें. पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365.
16: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
0: السلام علیکم پاکستان.

0: 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: Via Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Your location for maximum music.
1: Emergency कभी बताकर नहीं आती.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है.
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
8: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
11: का वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
12: This program is brought to you by
8: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
12: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
7: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
3: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे।
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
6: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन साफिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन साफिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 24/7/365

0: system, but it's love for money.
1: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
2: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
5: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
2: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
9: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
1: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
9: Assalamu alaikum pakistan.

your location for maximum music.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का एनर्जेटिक सा आगाज। और जब भी हमें एनर्जेटिक सा आगाज करना होता है तो मुझे लगता है कि अबरार उल हक का नच पंजाबन इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जो एनर्जी इस ट्रैक में है ना वो मुझे लगता है कि शायद ही किसी और ट्रैक में हो, क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी ट्रैक है। तो मैंने कहा जी आज प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हम इसके साथ करते हैं और साथ ही साथ आपसे सवाल भी पूछते हैं। तो हमारा आज का सवाल आप लोगों से ये है कि, लेकिन सवाल पूछने से पहले हम आपको तरीकाकार तो बताना भूल गए, तो पहले तरीकाकार आपको बताएंगे। तो आपने अपने मोबाइल के रॉइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी स्टेटस हो चुका है अपडेट। और आज का सवाल भी हमारा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है और ये सवाल का जवाब हम आप ही की जुबानी आप लोगों से जानेंगे। तो भाई आज का हमारा आपसे सवाल ये है कि किसकी नाराजगी आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो वो कौन है जिसकी नाराजगी आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो एक दिन की हो, एक पल की हो, एक घंटे की हो या एक मिनट की हो, फौरन से उसे मना लेते हैं। तो कौन है जिसकी नाराजगी आपको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती? तो और आज हम नाराजगी पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोई ट्रैक्स भी अगर आपके जहन में तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। चंद आप तो हम जानते हैं और उसे शामिल करेंगे, लेकिन ऑल्दो वैसे तो मैं रोजी आप लोगों से कहती हूं कि कभी किसी को नाराज ना किया करें, अगर कोई नाराज हो भी जाए तो पहल कर मामला को जल्द अज जल्द सॉर्ट कर लें, क्योंकि लोगों में जब लड़ाई हो जाती है ना तो लोग याद रखते हैं ये बात कि मैं

0: ओके सो वी आर बैक विद द ट्रैक और हमारे पास रुताबा का भी मैसेज आया है. कहती हैं सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कहती हैं कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहती हैं मेरी कजन की संडे को शादी है, उनको सॉन्ग डेडिकेट कर दें प्लीज. सॉन्ग भी बताया उन्होंने और कहती हैं इनके लंच में बीफ कोरमा है. दैट्स रियली नाइस. तो उन्होंने अपना लंच भी हमसे शेयर कर दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि भाई इनके कजन की शादी है. एंड दैट्स रियली नाइस. और शादियों की तो भाई अलग ही बात होती है, बिकॉज शादियों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है. और अगर आपकी किसी बहुत करीबी की शादी होती है ना, तो एक्चुअली में उसमें डबल ट्रिपल मजा आता है, बिकॉज वो एक नेक्स्ट लेवल शादी होती है. क्योंकि आपको पता है किसी अपने की शादी में मजा आता है, आपका पार्टिसिपेशन भी होता है. और जब हम किसी गैरों की शादी में जाते हैं, गैरों के इन द सेंस के कोई अपने मोहल्ले वालों की जा रहे हैं, किसी के दोस्त की शादी में जा रहे हैं ऑल दो, तो उसमें तो यू हैव टू बी लाइक सो काइंड एंड कूल और आपको बस सुकून से बैठे रहना होता है. लेकिन अपनी कजन्स की शादी है किसी शादी में ना, एक बहुत मजा आता है आपको कि बिल्कुल आपकी अपनी शादी होती है और आपको वाकई में बैठने की फुर्सत नहीं मिलती. तो ये है कि किसी और की शादी में ज्यादा मजा आता तो है, और किसी और की क्या, जब आपके कजन की शादी हो तो भाई फिर तो मजा नेक्स्ट लेवल होता ही है. अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम ब्रेक की जानब चल रहे हैं, आते हैं वापस ट्रैक के साथ. सवाल हमने आपसे पूछा था कि किसकी नाराजगी आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो हमें जरूर बताएं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई किसकी नाराजगी जो है वो आपसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती है. जब तक हम चलते हैं ब्रेक की जानब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ.
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है.
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
6: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
8: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
9: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

यस एवरीबॉडी, सो आई एम बैक. और इसी के साथ साथ भाई आज जो है वो 16th of September है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज मेरे लिसनर्स में से किसी की बर्थडे है या फिर आपके किसी खास दोस्त की सालगिरह है या आपके किसी रिश्तेदार की है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. सालगिरह के साथ साथ एनिवर्सरी का भी दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई आज के दिन. आई डोंट नो विच इज वेरी स्पेशल फॉर यू. अगर वो स्पेशल दिन है आज आपकी जिंदगानी का तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और स्पेशल दिन की भी ना बहुत सारी अकसामें होती हैं, वो जरूरी सिर्फ ये नहीं होता कि बर्थडे और एनिवर्सरी है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिनों को मजीद खास बना देती हैं, जैसे कि आपकी कहीं जॉब हो जाना, आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाना, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल जाना, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन आपके साथ हो जाना, या कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स का मिल जाना. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिन को मजीद खास बनाती हैं. हम बड़े नाशुक्रे हैं, समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि यार हमारी जिंदगी में जो है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वही बोरिंग लाइफ और वही जिंदगानी. लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपको एक दिन में भी छोटी मोटी बहुत सारी खुशियां देता है जो आपको मिलती हैं, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ हैपनिंग होता है. अक्सर औकात हमें लग रहा होता है कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात से आप बच जाते हैं, बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं. सो ये है कि एवरी डे इज वेरी स्पेशल, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है जो शायद हमें पता भी नहीं होता है. लेकिन बहुत सारी चीजें रोजमर्रा की जिंदगानी में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं. खैर जी, हम बात कर रहे थे कि भाई आज कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं. तो आज ना नेशनल प्लेडो डे मनाया जा रहा है. ओके, जो एक डो होता है जिसे यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, जो कि बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है. मुझे लगता है कि वो सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का भी बड़ा फेवरेट होता है, क्योंकि इतना मजा आता है उसमें कुछ ना कुछ बनाने का. लेकिन उसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना जाने क्या क्या चीजें बना लेते हैं. तो द पीपल इज सो स्किलफुल एंड दे रियली लाइक टू प्ले विद दैट प्ले डो. तो ये आज एक खसूसी दिन मनाया जा रहा है, और वाकई में भाई ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्ले डो एक ऐसी चीज है जिससे आई एम श्योर कि आप सबने अपने बचपन में जरूर खेला होगा, और सिर्फ बचपन ही नहीं बल्कि बड़े होकर भी ना उसे खेलने का एक अपना ही मजा होता है. तो भाई आज इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है. अच्छा जी, हमारे पास मैसेज आ गया है. कहते हैं, आप ही आज आपने पूछा है कि किसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती. सच कहूं तो मैं अपनी दोस्त की नाराजगी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता. ओके, हसन ने हमें मैसेज किया है कि भाई सच ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त की नाराजगी एक पल को भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती. ये देखो दोस्त कितने अच्छा दोस्त है तुम्हारा कि एक पल की नाराजगी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती. एंड आई होप हसन कि आपने ये मैसेज अगर किसी को कन्वे करना चाहा है तो वो भी आपको इस वक्त सुन रहा हो तो उसे पता चले. क्योंकि अक्सर औकात हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हर एक शख्स से, लेकिन हमारे दिल में क्या बात होती है वो हम कभी कभी कह देते हैं, और जब हम कभी कभी कह देते हैं तो सुनने वाला बड़ा हैरान होता है. तो देखो भाई कितना लायक दोस्त है तुम्हारा, उसको तुम्हारी नाराजगी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है. मजीद मैसेज को करेंगे शामिल, लेकिन एक ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

Yes, everybody. So I am back. और जी प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत कायम करने के बाद आपसे जाना जाता है कि आपके लंच में क्या है, तो क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, आप हमें जरूर बताएं कि इस वक्त आपके लंच में क्या मौजूद है. लुकपल कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं. कहती हैं, मेरी अम्मी थी जिनकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अब मेरी सिस्टर है छोटी. ओके, इसकी नाराजगी लुकपल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. कहती हैं, आज लंच में लौकी गोश्त है, प्लीज प्ले सॉन्ग जिस दिन से देखा है तुमको. ओके, Dedicate to you. Okay, जिस दिन से देखा है तुमको सनम. Okay, which track is this? All right, we'll play this. बिल्कुल हम इसे शामिल करेंगे. आपने करना है थोड़ा सा इंतजार और हम इसे करेंगे शामिल. लेकिन इसी के साथ साथ भाई बाकी लिसनर्स से भी हम जानेंगे. लुकपल ने बता दिया, हमें रुताबा ने बता दिया कि उनके लंच में क्या है. बाकी लोगों से हम जानेंगे कि भाई उनके लंच में क्या क्या बन रहा है, क्या बन चुका है या कुछ और बनने का इरादा है. तो क्या क्या आपके लंच में मौजूद है हमें जरूर बताएं. बिरयानी, निहारी, कबाब, पुलाव, दाल, चावल, काठियावाड़ी, छोले या फिर कुछ और है आपके लंच में, तो हमें जरूर बताएं. हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भाई बड़ा मजा आता है. ये लंच का जो टाइम होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज ये थोड़ा पीसफुल टाइम होता है. आप अपने काम से भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि वर्किंग होते हैं, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. कि जब वर्किंग लोग जब अपना लंच करते हैं ना तो बड़े सेटिस्फाई रहते हैं और वो कहते हैं ये टाइम हमारा बड़ा पीसफुल टाइम है तो इसको हमें एंजॉय करने दो. तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है वो हम एक अदर ट्रैक की जानेब भी जा रहे हैं. तो आते हैं वापस हम ट्रैक के पास.

0: ओके जी, सो ट्रैक के साथ हम वापस आ चुके हैं आपके लंच के बारे में। हम जान रहे थे कि भाई आपके लंच में इस वक्त क्या है। थोड़ी सी गर्मी भी है तो लंच थोड़ा सा ऐसा भी रखा जा रहा होता है, लेकिन ये है कि इस पीसफुल टाइम में आपको हर चीज बड़ी मजे की लग रही होती है। और मैं कहती हूँ कि अगर कोई चीज बहुत ही मजे की बनकर आई है, यानी कि उसका जो स्वाद है वो यानी कि टेस्ट में बड़ी मजे की है, मजेदार है ना, तो वो कोई भी चीज हो, वो चीज भी हो ना जो आप नहीं भी खाते, वो भी आप बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको फिर वो हर चीज बड़ी मजे की लग रही होती है। लेकिन ऐसा है कि भाई कुछ लोगों के हाथ में ना बड़ा ही अल्लाह ताला की तरफ से कोई खसूसी चीज होती है कि उनके हाथ में जायका बड़ा होता है कि वो भी चीज बना लें जो आप शौक से नहीं खाते, लेकिन वो इतनी मजे की हो जाती है कि आपको उसे खाकर ना मजे ही आ जाते हैं, और अक्सर औकात इसी वजह से वो चीज आपकी पसंदीदा भी बन जाती है। तो ऐसे टैलेंटेड लोग इस मुआशरे में बहुत मौजूद हैं, और स्पेशली ये क्रेडिट खवातीन को ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर कुकिंग खवातीन ही कर रही होती हैं और वो बड़ा मजे मजे का खाना बनाकर लोगों को खिला रही होती हैं। तो इस वक्त मेरे लिसनर्स में भी होगा भाई, कुछ शेफ होंगे, आई थिंक लुकवर्ल्ड इज ऑल्सो अ गुड शेफ। ट्राई तो नहीं किया लुकवर्ल्ड हमने आपके हाथ का खाना, लेकिन आप मजे की चीजें बनाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लुकवर्ल्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड शेफ। कभी ट्राई तो नहीं किया लुकवर्ल्ड? कैसी बात है कि आपने हमें हाथ का कभी खाना ट्राई नहीं करवाया, तो ट्राई तो करना बनता है। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी मेरी लिसनर्स थी, जो हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो थे वो हमें कॉल पर तो बिल्कुल ज्वाइन करते थे और बता रहे होते थे कि उनके लंच में क्या है। तो बेसिक चीज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल की जो होती है वो ये जरूर होती है कि लंच आप अपना जरूर हमसे शेयर करें या बताएं कि क्या खाने या बनाने का इरादा है। अब वो कोई स्ट्रीट फूड की भी अक्सर औकात आपको क्रेविंग हो रही होती है, कभी आपको बिरयानी की, तो लिटरली ना कभी आपको बहुत जोर की क्रेविंग हो रही होती है कि बस बिरयानी मुझे खानी ही खानी है ना एट एनी कॉस्ट। तो बिरयानी उन खानों में से एक है कि वो आप के लिए बड़ी आसान है, मतलब पहुंच में होती है आपकी बिरयानी, क्योंकि आप बिरयानी आपको हर जाने मिल जाती है, लेकिन ना उसकी बैठे बिठाए आपको एकदम से क्रेविंग ऐसी होती है कि आप कहते हैं कि यार बिरयानी खानी है, और बस खानी है तो खानी है। तो ऐसी क्रेविंग होती है, और दोपहर में जो खुशबुएं आ रही होती है, वैसे बिरयानी खुशबू रात में भी आ रही होती है ऐसी बात नहीं, लेकिन दोपहर में तो अल्लाह, मैं कहती हूं मैं इतना एंजॉय करती हूं ना अपने लंच टाइम को वेरी पीसफुली, तो उस टाइम में अगर बिरयानी की खुशबू आपको कहीं से भी आ जाए तो मजा ही आ जाता है। खैर जी, आपके घर में इस वक्त किस खाने की खुशबू आ रही है हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती,
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है,
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
6: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 03202758492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: This program is brought to you by
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef,
11: and Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
9: FM 100. Like us on Facebook.com/
12: Flash FM 24/7 365.
13: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

Yes, my friends, तो I am back again. मैं आ चुकी हूँ वापस और आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं जिसे हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि हम वापस आ चुके हैं तो आपको एजबेल के हवाले से कुछ मजीद मालूमात फराहम करते चलते हैं. बॉयलर ब्रीडर और लेयर पोल्ट्री फार्म की वर्किंग कैपिटल जरूरियात के लिए एचबीएल पोल्ट्री फाइनेंस दस्तियाब है. ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के लिए मुनासिब और फ्लेक्सीबल पेमेंट प्लान फराहम किए जाते हैं. पोल्ट्री के खर्चों और रोजमर्रा के खर्चे हैं, एचबीएल पोल्ट्री फाइनेंस के अपने कारोबार को सहारा दें. सो पोल्ट्री फाइनेंस आपके पास मौजूद है, आप इससे अवेल कर सकते हैं और फायदा जो है वो आप उठा सकते हैं.

0: السلام عليكم باكستان.
1: Set the sound generator FM 100.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. It's 10 minutes past 2. And the dial right now, 4 बजे तक आप लोगों के साथ मौजूद हैं. आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स के लिए. टाइप के शायद एंड लीव स्पेस. आपका मैसेज, आपका नाम, रिक्वेस्ट और 3-6-3-6 पर भेजना है. प्लस यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट इन ऑन माई पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine. ओके, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, लेकिन मैसेजेस हम पढ़ेंगे एक ट्रैक के बाद. सो विल बी बैक राइट आफ्टर दिस. हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneek.
0: And
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
5: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझबूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
9: FM 247 365.
10: Radio.

ओके सो मौसम के हवाले से अगर हम थोड़ा सा बात करें तो तीन दिन से जो है आप लोगों को पता था कि जैसे कि बड़ा बारिश की जो है वो एक क्या कहते हैं पेशन गोई की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्रॉपर बारिश तो नहीं हो सकी. जाहिर है बारिश हुई कहाँ है, नहीं हो सकी. इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है. एक तो सबसे ज्यादा अगस्त के एंड में जो है मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन अब अगेन दोबारा से गर्मी जो है स्टार्ट हो गई है शदीद वाली. तो अभी मौसम की प्रेडिक्शन अभी कुछ इसी तरीके से है. लेट्स सी के कब जाके वेदर अच्छा होता है. सर्दियां आने तो वाली हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कराची में सर्दियां किस तरीके की पड़ती है. जिस तरीके की सर्दी पड़ती है वो नहीं पता चलती है. एनीवेज right now we are moving on towards the request of Naila. The track is unhone kaha yani Khalid ka koi song laga dein. So this track is for you. Milte hain is gaane ke baad.

0: the music. Take control. Control. Let the music take control. That is FM 100 Pakistan.
1: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
2: And
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Listeners tell us about FM 100.
6: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
7: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
8: Number one music station.

Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड द शो इज कॉल्ड जीनी नो रेडियो. माय नेम इज जैस्मिन. सो गाइस, ढाई बज चुके हैं. नूर ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम नूर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए. अच्छा, नुसरत फतेह अली खान का उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, मस्त नजरों से. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, विल प्ले योर सॉन्ग. All right.

ओके सो जनाब, अब आपने बताना है कि कौन सा सॉन्ग है. बड़ा आसान सा सॉन्ग है वैसे. आप लोग आसानी से गैस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सा गाना है. ओके हमारे पास आयशा का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम आयशा, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. आप बताइए आप कैसे हैं. मेरे पास तुम होगा ओएसटी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था. सो ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी पहले. सो अगर आप सुन रही हैं तो आयशा हम आपका सॉन्ग जो है वो भी प्ले कर रहे हैं. दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
0: It's number one music station. FM 100.
3: Hormones ke baare mein confuse hain. Mood swings, stress, ya jism mein tabdiliyan. आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स हार्मोन्स की दुनिया जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा जुमेरात 17 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर हार्मोन टॉक्स हार्मोन्स की दुनिया ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: And
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: In radio.

Okay, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोगों को बताते चलें. Guess the song का competition चल रहा है. So messages भी काफी सारे आ रहे हैं हमारे पास. जवाब आना शुरू हो गए हैं. हम इसे 3:15 तक continue रखेंगे. आप जल्दी जल्दी हमें मैसेज कर सकते हैं. जो विनर होगा वो उसके हम दो सॉन्ग्स जो है वो प्ले करेंगे. जो रिक्वेस्ट होगी दो विनर्स हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे. ओके, निमरा ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम निमरा. ओके, आपका जो जवाब है हमने नोट कर लिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एक्सक्यूज मी प्लीज. अच्छा, सॉन्ग जो है दोबारा से मैं प्ले कर देती हूँ. कौन सा सॉन्ग है आप लोग सुन लें.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. और गेस द सॉन्ग का कॉम्पिटिशन चल रहा था. सवा तीन जो है वो हो भी चुके हैं और अभी आपको गाना सुनाएं कि हमने रिक्वेस्ट किया था सॉन्ग ओएसटी बेदर्दी का. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे. आपको बहुत मुबारक. अगर कोई एक और गाना भी बताना है तो ताबत मुझे बता दो. सही है, सो गाने का नाम है लगाया दिल सजाद अली का. ये सॉन्ग मैं आपको थोड़ा सा सुना भी दूं. ये हमने कंपटीशन में यूज किया था. और दूसरे विनर हैं, दूसरे विनर का भी नाम बता देते हैं आपको. शायद हमारे दूसरे विनर हैं, शायद आपने मुझे रिक्वेस्ट बताई नहीं है, जल्दी से मुझे बता दें दो गाने आपके कौन से हैं. सही है, और आप हमारे विनर हैं कंपटीशन के. सो सुनते हैं वो गाना जो कंपटीशन में हमने रखा था. दिस इज द ट्रैक.

के दिल जानिया हदीका कयानी का प्ले कर दीजिएगा। और एक और सॉन्ग भी उन्होंने बता दिया है, दूरी आतिफ असलम का, कह रहे ये देख लें ये तीन सॉन्ग्स हैं और अगर हो सके तो तीनों प्ले कर दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि मैं तीनों इंक्लूड कर दूं, लेकिन वैसे हम लोग का दो का कमिटमेंट हुआ है, जो भी हमारा विनर है हम उसके दो सॉन्ग्स प्ले करेंगे। अच्छा रुताबा, आपने जो मुझे गाना बताया ना वो प्ले नहीं हो सकता यार, ओनली पाकिस्तानी गाने, तो कोई पाकिस्तानी बताना है तो वो मुझे बता दो जल्दी से मैसेज करके, चाहो तो पेज पे भी कर सकती हो facebook.com/orz.jazmin। सो मीनवाइल हम जा रहे हैं शायद की रिक्वेस्ट की तरफ, द ट्रैक इज द ओएसटी ऑफ दरिनजात।

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और जनाब 3:30 हो गए हैं. 4 बजे तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. आप लोगों को बताते चले कि अभी जो है हमारा कॉम्पिटिशन तो खत्म हो गया और शाहिद की भी जल्दी से रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास. 2 गाने उन्होंने हमें बता दी हैं. एक सॉन्ग उन्होंने बताया है कि दर निजात का OST प्ले कर दीजिएगा. दूसरा उन्होंने बताया है

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and it's 40 minutes past 3 on the dial right now. थोड़ा सा टाइम ही रह गया है हमारे शो को खत्म होने में. ओके, पेज पे हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं, नाम शामिल कर लेते हैं. रिक्वेस्ट भी आई हुई है. अरशद जमील ने मैसेज किया है. हेलो अरशद, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हरकले सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. ठीक है, जरूर इंक्लूड कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, हाशमी ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शो कह रहे हैं अच्छा है, ठीक हो गया है. सो अभी हमारे पास टाइम कम है, हम अरशद की रिक्वेस्ट प्ले करते हैं. द ट्रैक इज हर कले. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा.

0: We'll be right back after this commercial break.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-550-55 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.ncci.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbb.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: facebook.com/fm247365
6: fm247365. Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine. Genie in Radio.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 and facebook.com/rzrjasmine पे आप messages कर सकते हैं और अगर कोई feedback देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं. कोई topic suggest करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. Okay, time ही जो है वो थोड़ा सा रह गया है और कल भी हमारा शो होगा, सो सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. Meanwhile, एक और ट्रैक की तरफ जा रहे हैं. द ट्रैक इज ओएसटी ऑफ जान निसार. ये हमें रमशा ने मैसेज किया था और रिक्वेस्ट किया था. थोड़ा सा लेट हो गए बट आई होप कि आप सुन रही हूं. दिस ट्रैक इज फॉर यू.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: पकड़ नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
4: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
1: प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा। जुमेरात 17 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: FM 247/365 FM 247/365

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
3: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत, और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत ज़वाबत लागू है।

0: द सेट स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
1: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। Premium has its shape.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम कराची की तकदीर।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
9: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311111 7837।
11: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
12: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में। जरूर आइएगा।
13: किसने कहा था पैसे

It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मज़ीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
4: शराइत ज़वाबित लागू है।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खुसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है। 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है। रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें।
12: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
16: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
17: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहाँ HBF
9: and try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
17: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
18: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
19: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
4: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
20: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
4: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
21: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
22: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
23: FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: This program is brought to you by
6: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
7: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
8: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
9: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
0: and
10: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally
0: facebook.com/fm247365
11: Across the nation, there is only 100 FM.

0: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरोख हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की है। होटल मेट्रोपोल से इशारा है, प्रशासन की जानी आने वाला वो ट्रैफिक जो बलोच कॉलोनी ब्रिज और उससे आगे की जानी जा रहा है, उस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। ऑफिस की वजह से ट्रैफिक इस वक्त दबाव का शिकार है शारा फैसल पर। इसके साथ साथ वो ट्रैफिक जो कयूमाबाद चौरंगी से आ रहा है बलोच कॉलोनी ब्रिज और वहां से शारा फैसल की जानेब, उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है। इसके साथ साथ एफ एम को मिलने वाली इस तरह के मुताबिक वो ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानेब, उस पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे हैं ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: exactly. I can see your halo. Thank you so very much for joining in. I'm going to move up to a commercial break, and of course we're going to be paying our respects also through the airs of Radio 100 Pakistan. Thank you once again for staying tuned, and of course keep on the dial all the way to 9 this night.
1: It's not just the music, it's the way we bring it on. Music on Wheels with TJ Costello.
2: We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
5: कंट्रोल फॉर M210-210 मूव करेंगे.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली.
9: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबित लागू है.
13: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
14: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
15: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
17: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
18: नेपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. नेपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
19: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
12: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
20: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
21: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
20: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
21: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
20: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
21: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
20: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
22: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
23: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
24: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
25: किसने कहा था पैसे बचा.

0: p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
3: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And
4: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
0: And
5: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
11: शराइत ज़वाबत लागू है.
12: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
13: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
14: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
16: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: तबाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111-118-2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं.
17: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
5: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
3: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026, 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
6: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शराइत जवाबत लागू है।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर दो और तीन पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है।

0: रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें।
1: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरे यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत
1: मंशियात एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही आइस हेरोइन चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है ये जिस्म को कमजोर करती हैं जहन को मफलूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है आइए अहद करें अपने नौजवानों को बचाएं अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: FM100.com.
1: I just want to party.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: 100 FM,
4: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: This program is brought to you by HPSL Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरायला और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
6: facebook.com/fm247365
7: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिल गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
8: Bumper to bumper, only on FM 100.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hormones ke baare mein confuse hain. Mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan. Aakhir jism ke andar kya ho raha hai? To sunna na bhule Hormone Talks. Hormones ki duniya. जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा। जुमेरात 17 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
0: This program is brought to you by FPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत। This public service message is brought to you by FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए। FM 24/7/365 365 Evening Drive Time.

0: Your location for maximum music. This program was brought to you by FPL's banking ke paas hai poultry farm fish farm sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. It's 9 p.m. This time check is brought to you by FPL's banking ke paas hai poultry farm fish farm sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
0: 100 FM.
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वागत खानम कराची की तकलीफ.
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
8: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है.
10: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: Like us on Facebook.com/FM247365.
12: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki Takbir.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत

0: Karachi Ki Takbir.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hormones ke baare mein confuse hain. Mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan. Aakhir jism ke andar kya ho raha hai? To sunna na bhule Hormone Talks. Hormones ki duniya. Jahan hogi sehat aur hormones balance par khulkar baat. माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अरूज लाल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एंड जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs, कम वजन खवातीन में भी मुमकिन खतरा. जुमेरात 17 सितंबर, दिन 2 बजे, सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर. हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
6: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
7: पाकिस्तान टेलीकम
5: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی آئی۔

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार।

0: से एंड पता है कि वो ही इज अ टीचर ही इज टीचर्स म्यूजिक इन द कॉलेज राइट कॉलेज एंड स्कूल And he lives far, far away in the Maria Colony. Oh, वहाँ से इधर आए हैं बड़ी बात है इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हम उसके बहुत शुक्र गुजार हैं होकार साहब वी वेलकम यू टू आवर स्टूडियो ऑडियो फील्ड
1: थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच इट्स माई प्लेजर
0: एनी टाइम वेरी गुड How was the Paris you just had?
1: Oh, fantastic. Okay. Tasty. Yes. Wonderful.
0: No. I am hungry since afternoon. I didn't have no lunch. So my missus had to go to her parlor. She had to go to the gym. I know she said, apne khane ka khud hi bandobas kar le.
1: Very nice. Fantastic.
0: So, khair, Waqar sahab, why don't we start with your song?
1: Right? Sure, why not?
0: Which one you want to sing first?
1: I would like to start with the song of Khan Saab Mehndi Hasan Khan Saab.
0: Oh my God.
1: Duniya Kisi Ke Pyar Mein. That's a lovely song. I love that.
0: Duniya Kisi Ke Pyar Mein.
1: Duniya Kisi Ke Pyar Mein.
0: Is that song?
1: That is Jannat Se Kam Nahi.
0: दुनिया किसी के प्यार में ओके ओके मैं वो ट्रैक लगा लेता हूँ आप गाएगा बड़े मजे ले लेके गाएगा ठीक है एंड हियर यू गो

0: ओके
1: यूं खो गए तेरे प्यार में अब होश में आना मुश्किल है तब आंख मिलाना मुश्किल था अब

0: Very nice. Well, the shaka, hey, Adab to Kumal, you sound like a complete professional.
1: Thank you very much.
2: But mistaken. I've done a mistake. Mujhe duniya khan sahab ke song se shuru karna tha, duniya kisi ke pyar mein. But just unfortunately. No problem.
0: Jo bhi aapke paas track hai, free of.
2: Yes, yes. So randomly I'm.
0: और वॉइस तो लाइव चल रहा है ना आपको yes. करियोकी है तो क्या क्या कर सकते हैं. खैर अब आप ये बताइए कि आप इतनी सारी काबिलियत कहां से आ गई आपके पास, मुझे बताइए.
2: सर आई थिंक बट आई एम श्योर इवन दैट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑल अल्लाह सुभान व तआला.
0: हां ऑफ कोर्स वो तो है, मगर उसको लाए अमल भी आप लाते हैं ना, मतलब भी उसको प्रैक्टिकलिटी में
2: जी जी
0: रियलिटी में लाके लोगों को पेश करते हैं. वो भी एक बड़ा सर्विस है विच इज कमेंडेबल ऑफ कोर्स.
2: ये शौक की बात, शौक इंतहा की है.
0: ये शौक पर भी काफी गाने वाने हैं, आप गा सकते हैं. अच्छा बताइए, अब स्टार्ट विथ योर लिटिल बायोग्राफी.
2: वेल आई हैव स्टार्टेड माई म्यूजिक फ्रॉम माई चाइल्डहुड. पेरेंट्स बताते हैं कि व्हेन आई वाज अ किड, और जब मेरे पास टॉयज होते थे तो आई इग्नोर द ऑल टॉयज एंड मैं सारा जो फोकस होता था म्यूजिक पर होता था. कहीं से भी म्यूजिक आता था तो मैं फौरन म्यूजिक की तरफ माइल होता था, टॉयज की तरफ या और चीजों की तरफ नहीं होता था.
0: अच्छा,
2: तो दिस इज माई बिगनिंग.
0: ओह
2: वेरी स्टार्ट.
0: ऑफ कोर्स वेरी गुड, वेरी नाइस. अच्छा अब अच्छा फिर भी तो हो रहा था फिर yes. ये आप जाना इतना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ों को पढ़ा रहे हैं म्यूजिक, और मैंने देखा आप न्यूट्रिशन भी पढ़ा रहे हैं.
2: यस
0: yes, न्यूट्रिशन कितना डिफिकल्ट चीज
2: है.
0: न्यूट्रिशन तो एक एक अलग ही दुनिया है ना, कि आप न्यूट्रिशन समझें.
2: जी बिल्कुल.
0: जैसे मैं जब वहां गया था रशिया, वहां नहीं उधर कोरिया, तो उन्होंने जो लास्ट ग्रैंड फिनाले था सॉन्ग के लिए, उन्होंने मिला सबने मिलकर गाना है इन फ्रंट ऑफ द किम इल सुंग, तो उन्होंने जाके वो दे दिया, पर्चा दे दिया, और मैंने कहा ये क्या है, वो सारा म्यूजिक लिखा हुआ था. वो सब लोग ने गाना शुरू कर दिया. मैंने क्या बोला. खैर उसके आगे मैं बात करता हूँ. छोटा सा ब्रेक आ गया है और मैं आपको आगे चल के बात करते हैं, आगे गाने भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे.
3: एचपीएल सरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत. FM 247/365

0: हम बात कर रहे हैं खान साहब के उस सॉन्ग की, उस सॉन्ग की जो अभी हमने जिक्र किया था, जिंदगी में,
1: जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं।
0: अरे हम लवली सॉन्ग, जिंदगी में एक दफा तो सभी प्यार करते हैं, हम तो पता नहीं कितनी दफा प्यार कर गए मगर ये कि उसमें सब में एक असली प्यार होता है।
1: यस ऑफ कोर्स,
0: अब वो कभी जाता नहीं है। अच्छा आप कुछ भी कर लें, उस लड़की को देख लें, कोई भी वो शहजादी नहीं होती, बस एक सी और लड़की होती है, बस आपको दिल से आ चुका होता है। इसलिए कि मौला अली ने फरमाया था कि जब इंसान हम बन रहे थे ऊपर, तो ऊपर साथ साथ खड़े थे मर्द औरत, मर्द और इस तरह, तो जो साथ में खड़ा मर्द या औरत होता है जब वो दुनिया में आते हैं, तो दुनिया में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको प्यार हो जाता है, उनको पहले से उनको एक नस्बत हो जाती है उनकी। तो वो एक ही दफा हमें भी हुआ है और आपको भी,
1: मोहब्बत तो वो बिल्ट इन है नफ्सियात में,
0: और इनका भी हुआ होगा, इनको पता नहीं है, पता नहीं होता किसी किसी को, मगर हमने पता लगाया। तो चले तो हम सोचते हैं जिंदगी में प्यार किया, चलो ये है जिंदगी में, चलो चले
1: रेडी स्टार्ट।

आशिर वजाहत साहब हैं, जस्ट जस्ट अस, सिर्फ हम।

जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसा कि आप जानते हैं, आप शायद हाँ पता तो होगा ही, मैं काफी पुराना चावल हूँ और बहुत सारे गाने मैं गा चुका हूँ बेशुमार। तो कुछ गाने मैं आज ढूंढ कर लाया हूँ और एक हिसाब के मुताबिक मुझे कहा गया है कि 1500 गाने गाए मैंने। टेलीविजन के जमाने में ऐसा था जैसा कि एक सिंगर जो था 3-4 जगह एक दिन में 2-3 गाने गाता था, वो जमाना ऐसी था मेरे लिए। तो मैं उनमें से कुछ गाने लाया हूँ आपके लिए, मैं इसको प्ले करूंगा एक बार।

0: क्या काम हो रहे हैं। ये काफी पुरानी फिल्म है और इसका म्यूजिक इंडिया से करवाया था, बाबल बोस ने ये म्यूजिक किया था और वहां के म्यूजिशियंस ने किया था, फिर वहां के सिंगर्स ने भी इसको गाया ताकि वहां से ट्रैक ला सके। नहीं तो वहां का एक रूल है कि जो भी यहां सॉन्ग रिकॉर्ड करेगा कुछ करेगा तो पहले यहां के सिंगर्स उसको गाएंगे और उनको पैसे देगा। हाँ जी, इसी तरह तो चूंकि मैं फिल्म एक्टर भी था और सिंगर भी था तो उन्होंने कहा कि आपके पास एनएससी है नहीं तो आप लोग जो है ना प्रोड्यूसर आपके सबसे गवाएं। और भाई भाग भी थी उससे भी गवाया और फिर वापस आके यहां इसको अगेन शालीमार स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। इट वॉज वेरी गुड फिल्म। मोहसिन खान ने कुछ एक दो फिल्में की हैं, तो बाबर शरीफ तो सुपर स्टार रही है हमेशा और रहेगी। ठीक है ख्वातीन हज़रात, अब हम चलते हैं अपने दोस्त अपने मेहमान की तरफ और इनसे अब एक और मजेदार सॉन्ग सुने। अरे यार ये क्या दे रही है दुनिया दुनिया दुनिया से क्या कौन सा सॉन्ग है ये? दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। सुनते हैं हमारे दोस्त हमारे मेहमान सो किस तरह गाते हैं। ये क्या चला गया?
1: ऊपर वाला है।

0: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसा कि आप सुन रहे होंगे हमारी बातें कि ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें बहुत सारे कभी कभी 50, 100, 150 म्यूजिशियंस होते हैं, हर आदमी अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है और ये जो स्टाफ नोटेशन है जिसकी बात मैं वकार साहब से कर रहा था कि अभी तक हमारी समझ से बाहर है, मगर वो उसको देख के पढ़ रहे होते हैं और पूरा बजा रहे होते हैं कि उसका पार्ट कब आएगा उसको पता है। जैसे लिखने पढ़ने में होता है ना कि ये मेरा पार्ट आया, वो उनको पार्ट आता है, वो म्यूजिक नोटेशन आता है बाकायदा, वो नोटेशन उसने बजाना होता है, वो ट्यून उसने बजानी होती है। तो बड़े साइंस से एक बॉल और वह मैं देखता हूँ वो कंडक्टर जो है पागलों की तरह बोल रहा, वो अपना छोटा स्टिक चला रहा होता है, कोई उसको देख नहीं रहा, वो लग रहा होता है और इतनी महारत से वो सम पे या मतलब बीट पर मिलता कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जबरदस्त होता है। खवातीन आजाद ये बातें तो होती रहेंगी और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा गाया और अभी थोड़ा सा वो अपने जॉनरे का भी गाना चाहेंगे। मेरे ख्याल में देखा न था जो हमारे पुराने दोस्त आलमगीर का बना हुआ सॉन्ग था और उन्हें भी बहुत अच्छा गाया था, बहुत फेमस भी हुआ था, तो वो आपके सामने हम लगाते हैं। कह देना, हाँ कह देना। ये है ना?
1: नीचे
0: ये नीचे

0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। असेंबली आपने री अरेंज किया है इसको, राइट? और शायरी भी खुद की है शायद, लगता
1: नहीं,
0: है
1: शायरी तो वही है।
0: हाँ, री अरेंज अच्छा किया, फीमेल से भी गवाया और बड़ा अच्छा किया। आई एम श्योर माई फ्रेंड आलमगीर विल बी वेरी हैप्पी अगर वो वॉच कर रहे हैं। हम अब आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और सॉन्ग है जो कि है दादा दादा दादा दादा, ये है परेशानियां। परेशानियों का मतलब कश्मीर से परेशानी का कुछ चक्कर है।

0: गुड गुड माई फ्रेंड, मैं सेंग वेरी, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बड़ा मजेदार गाया। और इसी के साथ ही हम आपसे खुदा हाफिज कहेंगे और कहेंगे शब बखैर, गुड नाइट, स्लीप टाइट।
1: आपकी
0: देखना, बात यह है कि गाना अच्छा होना जी चाहता कि
1: सारे,
0: अरे हम सारी स्ट्रिंग का सॉन्ग थोड़ा सा काटना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं है, बिल्कुल वक्त कम और मुकाबला सख्त।

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music.

वेलकम बैक कहेंगे छल्ला आया यूके तू। अब ये यूके कौन सा है जनाब? उमर कोट। एनीवे जनाब, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और तीन बजे तक करेंगे खूब हल्ला तो गुल्ला। अच्छा, ये सवाल आज का करने से पहले आपको पता है कोई भी सवाल करता हूं तो मैं थोड़ा सा जो है उसकी ग्राउंड बनाता हूं ताकि आपके जहन में वो चीज आ जाए। जैसे कल खुशबू की बात हुई तो खुशबू आपने महसूस की होगी, तो आज भी कुछ ऐसा ही है। गर्मियों में जो है वो आइसक्रीम बड़े शौक से खाई जाती है। आइसक्रीम वैसे ही बड़ी फेवरेट है, ये सिर्फ बच्चों की ही फेवरेट नहीं है बल्कि बड़ों की भी बड़ी फेवरेट है। आपको आइसक्रीम पसंद है? अच्छा, लड़के जो हैं, ये मर्द और औरत के हवाले से, लड़के और लड़कियों के हवाले से बात करूं कि आइसक्रीम में भी टेस्ट जो है डिफरेंट होता है। ज्यादातर लड़कियां जो है वो स्ट्रॉबेरी पसंद करती हैं, ब्लैकबेरी पसंद करती हैं, टेस्ट की बात कर रहा हूं आइसक्रीम्स में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है भाई, ऐसा नहीं है। खाते वैसे मतलब मर्द हजरात भी और खवातीन भी जो है वो हर टेस्ट करते हैं आइसक्रीम, ज्यादातर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। चॉकलेट बड़े शौक से खाती हैं खवातीन ज्यादातर। ये बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, बच्चों को तो कोई भी आइसक्रीम दे दो भाई, हम आइसक्रीम खाएंगे भाई। हाँ भाई, कोई भी आइसक्रीम खिला दें भाई, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम का अपना मजा है। अच्छा, आइसक्रीम के बारे में अक्सर ये सोचा जाता है कि भाई गर्मियों में आइसक्रीम का बहुत मजा आता है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ यार, सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का जो मजा है ना, और यार मैं तुझे दया से नहीं सकता। तो आइसक्रीम किसी भी मौसम में खाई जाती है, और मुख्तलिफ ब्रांड की आइसक्रीम्स तो मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ लोकली भी आइसक्रीम्स जो है, आइसक्रीम कोन्स, जैसे मशीन लगा ली और बस कोन चल रही, और अब तो आइसक्रीम पार्लर्स बहुत सारे बन गए हैं, स्कूप और ये और वो, मतलब एक स्कूप के साथ पिशावरी आइसक्रीम। अच्छा, उसका अपना एक टेस्ट है पिशावरी आइसक्रीम का भी। तो आइसक्रीम हर इंसान को पसंद होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आइसक्रीम पसंद ना हो। तो आपसे आज का सवाल भी कुछ आइसक्रीम से रिलेटेड ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम कहाँ खाई जाती है, या ये कह लीजिए कि कौन से मुल्क के शहरी सबसे ज्यादा आइसक्रीम को पसंद करते हैं? जी जी हैं जी जी, आपने मुझे बताना है 3636 पर, और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। सबसे पहले हमारे शहजादे, शहजादा मैं प्यार से हर एक को कह देता हूँ क्योंकि आप सभी शहजादे और शहजादी हैं। हैं जी, ये मेरी मोहब्बत है। एक तो मेरी शहजादी बहना है ना, जरीन नूर, तो ये हमारे ये भी बड़े प्यारे भाई हमारे यूसुफ भाई बाबोश से सलाम कह रहे हैं, और तमाम FM 100 की फैमिली को भी सलाम कहा है, आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई, खिताब गुल्लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा। और अब यूसुफ भाई ये जो लिखते हैं इनके हवाले से भी बात कर लें, हमारी प्यारी सी चाची के हवाले से बात करें, मेरी प्यारी सी बहना अरूसा के हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर गुलबानों के हवाले से बात करेंगे, और उनके साथ उनकी तमाम दोस्तें जो डॉक्टर जादी ने उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारे इमरान भाई भादराबाद वाले, क्या बात है, कहता आप गुल्लाला तो खैर, वो तो ऐसे गायब हुए जैसे हाँ। और गुफरान तो खैर यहीं पर होते हैं। तो जनाब, इन सब की अपना अपना एक मकाम, अपना अपना जो है एक अंदाज, खुसूसी तौर पर मैं जो इनमें जो जिक्र करूंगा ना, वो खिताबुल्लाला हो गए, इमरान भाई भादराबाद वाले, हमारी प्यारी सी चाची, चाची तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी साथ हैं, गाहे बगा

अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी साथ हैं, जो गाहे बगाहे आती रहती हैं। और उषा मेरी प्यारी सी बहना, ये बड़े ही मेरे बेहतरीन जिसको कहते हैं ना लिसनर्स में से शुमार होते थे। लेकिन खैर अपनी अपनी मसरूफियत, एक तो कुछ कॉल्स का भी सिलसिलाकार है, उसकी वजह से भी आगे पीछे। खैर जी, ये हमारे यूसुफ भाई द ग्रेट, आपका मैसेज हमने शामिल किया, आगे बढ़ते हैं। और मेरी प्यारी सी बहन एस गुल आ गई हैं, सलाम के बाद कह रहे हैं कैसे हैं भाई आप। लाला को, संजीदा अप्पी को, मुश को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। और आज हमारे लाला भी आ गए हैं और कह रहे जिगर या हबीबी आपको, सबा गुल को, मुश को, हिना गुल को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। पहला सॉन्ग अच्छा लगाया था और जिगर, सबा गुल, मुश, हिना को अपनी पसंद का सॉन्ग तीनों को इनाम कर दीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। लाला आजकल लगता है बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो आना जाना इनका जो है वो लगा रहता है, एक शो में होते हैं एक शो में नहीं होते। लाला ये क्या बात हुआ है? तो आपकी जानिब से गाना जरूर डेडिकेट करेंगे जनाब। और फजीला आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फजीला सुलेमानी और नौसीन नौरीन बहना मेरी कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं? ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब क्या कह रहे हैं जनाब? कहते हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। फरमाइश आ गई है सज्जाद अली अनुरजान और नसीम कुरैशी, इमरान रियाज, समी शेख, अयूब आफरीदी, खिताबुल लाला और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। और कहते हैं कि अफसोस कल और गुज़श्ता मंगल को आप मेरी पसंद का सॉन्ग नहीं सुनवाया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, खुशियों से माला माल रखे। बहुत दुआएं दी नेक ख्वाहिशात के साथ, हर लम्हा दुआ गो अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफबी एरिया कराची से। सर आज चला देंगे, आज चला देंगे आपके लिए ट्रैक, डोंट वरी यार। और जनाब अमीर बनने का वजीफा जो शख्स भी घर से बाहर इन अल्फाजों के को दोहराएगा वो मालामाल हो जाएगा। वो अल्फाज ये हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। सलीम मेमन भाई आप ये बताएं कि आप कितने अमीर हुआ? पहला मैसेज सलाम दुआ कर लिया करो यार, आते ही लजीफा डिशू, यानी कि समझ रहे ना। और क्या बात है जनाब, आरजे नदीम जट साहब भी आज सुन रहे हैं। सर जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? अरे उस्ताद जी की हाल है तुम्हारा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नदीम भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? संजू आ गई हैं और संजू क्या कहती हैं? संजू कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं रूहमन, रब तआला हमेशा आप पर मेहरबान रहे, इलाही आमीन। धड़कते दिल की धक धक से खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बस ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मुझे पाप लगे जो जग देखूं, मुझे तू सालिम तस्लीम पिया, वाह वाह वाह। मेरी रूहे सलूक के हाथ लगी, मेरा कायम इश्क कदीम पिया, वाह वाह वाह। पूरी कोशिश है रूहे मन इख्तिताम तक साथ रहूंगी, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। आमीन सो आमीन, जब बगैर साथ रहूंगी, ये हुई ना बात। और काबिले एहतराम नौरीन बहना शहजादी जरीन नूर, प्यारी सी अदीला के लिए ढेरों सलामती की उन्होंने दुआएं दी है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर एक और गाने की जानिब जाएंगे, थोड़े से धमाकेदार। अच्छा यार अभी यूसुफ भाई का पहला मैसेज जो आया बड़ा जबरदस्त सा मैसेज था और आप लोगों को आज मैं कुछ इंग्लिश गाने भी, नए गाने जो है वो भी आप लोगों की समातों की नजर करूंगा। कैटी पेरी का एक नया ट्रैक आया बड़ा जबरदस्त सा और जो इंग्लिश सॉन्ग लवर हैं उनको पसंद आएगा। हियर वी गो।

Welcome back. Beautiful track of Katy Perry. यार बहुत हसीन खातून है और एक अरसे से गा रही है, बहुत आला गा रही है। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि काफी अरसे के बाद जो है मैं सॉन्ग सर्चिंग करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। इंग्लिश ट्रैक्स की मैंने बहुत अरसे के बाद सॉन्ग सर्चिंग स्टार्ट की, तो दो तीन गाने जो है वो दिमाग पर लगे बड़े जबरदस्त। एक तो कैटी पेरी का ये ट्रैक था, और भी एक दो गाने हैं वो आपको सुनाऊंगा जरूर। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब, लेकिन उससे पहले आज मैंने सवाल जो पूछा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन से मुल्क में खाई जाती है, ये आपने मुझे बताना है। ये सवाल किया है जनाब आपसे। अमीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, शो वीआईबी बिंदास, बोले तो छगास। तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है और बिग सिस्टर संजीदा को सलाम, सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। अहमद जहांसेब का या बानी का, ओके। और अगर हो सके तो एक पख्तो सेंदर अला के नाम कर दें। एस गोल कह रही है ओके।

भूल हो गया हमका माफ दो, कल से हम पहले सलाम दुआ करेगा। सलीम मेमन भाई कह रहे हैं करना यही चाहिए सलीम भाई, आपको खुद यह ख्याल होना चाहिए। और करीम हुसैन साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एंड आज मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि जिनके फर्स्ट टाइम मैसेजेस आए होंगे, फजीला सुलेमानी हैं, हमारे करीम हुसैन साहब हैं, वाइड बाय द ग्रेट आरफीन, अरे इतने अरसे के बाद, अरे क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम, कह रही है हाउ आर यू, आई एम फाइन जनाब, आप कैसी हैं ये बताइएगा। और वाहिद भाई का हो गया। हाँ, जो लोग घर या सलीम भाई इसके तो हिज्जे करने पड़ेंगे आपके। और एक चर्चा आई है और वो चर्चा आपकी खिदमत में पेश खिदमत है संजू की। कह रही रात काफी गुजर चुकी थी, वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे और दिन भर की थकन के बावजूद बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उसने कोई मामूली सी बात कही और वो बेख्तियार हंस पड़ी। वो चंद लम्हे खामोश रहा। क्या हुआ, उसने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो फिर हंस दी और बात आगे बढ़ा दी, मगर उसने मोबाइल कान से हटाकर कुछ देर उसे देखा। उसे हमेशा हैरत होती थी कि एक ही शख्स की आवाज में इतना सुकून कैसे हो सकता है। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ चीजें याद रखने के लिए नहीं मिलती, बस इसलिए मिलती हैं कि जब दुनिया बहुत शोर करने लगे तो इंसान आके बंद करे और वो एक लम्हा याद करके खुद को संभाल ले। और शायद वो लड़की कभी जान ही ना पाई कि उसकी हंसी किसी के लिए सिर्फ हंसी नहीं थी। हाय। और कह रही है सॉन्ग की रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि प्लेलिस्ट शानदार होती है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये हंसी की बात जो है ना, इस पर बहुत सारे जुमले हैं, लेकिन एक ही जुमले पर बात खत्म कर देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कि सबसे मतलब जो सस्ता और कारामत सदकाए जारिया है वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हल्की सी किसी के लिए, ठीक है ना, वो हल्की सी मुस्कुराहट जो आप सामने वाले को हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं वो सदकाए जारिया में शुमार होती है। अब ये नहीं कि इसका मतलब ये हो गया तमाम नौजवान जो हैं वो हर खातून को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हाँ इस पर गुनाह है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हम जो है ना हर तरफ से बस निकाल रहे होते कि किसी तरीके से अपना काम निकल आए, हलाल हो जाए हर चीज, तो इस वजह से ये मुस्कुराहट जो है वो हर एक के लिए है, महरम के लिए, ये जो हदीस का मैंने जिक्र किया। लेकिन मुस्कुराहट के हवाले से मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूं। अक्सर जो है वो कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खैर ये हाल है लेकिन कराची में कुछ ज्यादा ही है, ट्रैफिक की जो भरमार है, और जब आप ऑफिस से घर निकलते हैं या घर से ऑफिस निकलते हैं या किसी भी काम से घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जो है वो बेहाल कर देती है। और ऐसे में जो है रोड्स पर जो है आप अक्सर देखते होंगे कि एक्सीडेंट भी होते हैं, और ये भी देखा होगा आपने कि अक्सर लोग बढ़ जाते हैं एक दूसरे से। तो जब भी किसी से गलती हो जाए, मोटर बाइक पर ही या गाड़ी पर ही, तो आपसे गलती हो जाए या किसी से हो, तो सामने वाले को मुस्कुराते हुए अगर आप कहना यार माजरत, तो आप यकीन माने बात वहीं रफा दफा हो जाए और फड्डा कहीं नजर ना आए, इतना फायदा है मुस्कुराहट का। खैर ये मुस्कुराहट तो दो मतलब तोता और तोती, तोता मैना कहते हैं वैसे, दो परिंदों की ये उनकी है। चले इसी बात पर जनाब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे एसगुल की जानिब से लाला को, और लाला की जानिब से एसगुल को, हिना गुल को, मानूर को, और कौन कौन से नाम लिए थे लाला ने, मैं नाम भाई सारे लेने पड़ते हैं, क्या करें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एसगुल, मोश्क, हिना और मानूर
ان سب کے نام یہ ٹریک ہے لالا کی جانب سے اور ایس گل کی جانب سے لالا کو. ایلو پھڑو.

वेलकम बैक कहेंगे भाई, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते हैं जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग कहते हैं सुने। अच्छा जनाब, मैसेजेस की जाने फौरन से बेशतर नदीम भाई, नो मजा इन मैसेजिंग बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग मैसेजेस केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में जॉब करता था एंड यू आर रीडिंग मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेज साहिबजादा साहब, मैं यकीन माने किसी स्कूल में नहीं हूं कि एक एक लफ्ज पकड़ा जा रहा है। हो जाता है यार, मतलब इससे ना तो मुझे कोई ट्रॉफी मिलेगी ना आपको मिलेगी। आप एक कंपनी में काम करते थे, ठीक है, बस होता है ये बात, तो आपकी फैक्ट है कि केयरफुली नहीं होता ऐसा, केयरफुली कोशिश होती है, बट आप लोगों की मोहब्बतों का इजहार आप मैसेजेस के जरिए इतना ज्यादा कर रहे होते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूं एंड आप लोगों के नाम आ जाए, लुब्बे लुबाब आ जाए उस मैसेज का, ये मेरा फोकस होता है बेसिकली। अब कोई एक आध लफ्ज आगे पीछे हो जाए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। लवली हेयर, लवली ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम लवली ब्रदर। रात को अचानक से मेरी आंख खुल गई है भाई। अचानक क्यों खुल गई? किसी ने पानी वानी फेंक दिया था, बुखार देख लिया था, किसी की रोने की आवाज आ रही थी। अच्छा, कानों की वजह से कोई तकलीफ में था, मुझे याद कर रहा था। आपको याद कर रहा था है? उधार उधार तो नहीं लिया हुआ किसी से? किसी की दर्द भरी आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। ओए होए होए होए, कूट छूट तो नहीं आते किसी को? मैं जब कमरे के दरवाजा खोला, दो मच्छर लड़ रहे थे आपस में। बस आपने तालियां बजाना शुरू कर दी होंगी, यानी कि समझ आए ना आप। जो लोग घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, यार ये तो हो गया कितनी बार, घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, कोई दूसरा मैसेज भाई, चाहते हो तो वो अपने अपने अपने घर का सामान बेच दे। अब आप लोग शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। सलीम मेमन, क्या हो गया यार, बहुत ठंडा बर्फ किस्म का मैसेज था ये। अच्छा भाई, हमारे जैन साहब आ गए हैं, कह रहे हैं सलाम या सद्दीक, कैफ अंता खुज मियां बाल मियां। भाई क्या बात है जैन साहब, नए लिसनर है ये भी हमारे, फर्स्ट टाइम अरबिक, अरबिक मैसेज है भाई। जैन भाई आपके लिए अरबिक गाना हो जाएगा एक। मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। थोड़ी बहुत समझ में आती है यार अरबिक। इमाम बख्शियार टंडू जाम से सही आ गया है और कहता भाई जाने सिंधी सॉन्ग अपने आवाज में सुनाओ प्लीज, मेरी आवाज में। अरे नहीं यार सही, ऐसा नहीं करो, सिंधी गाना हम कोई यार कोई याद नहीं है इतना ज्यादा तो, लेकिन हम आपके लिए गाना आज चलाएंगे जरूर, सिंधी गाना आपके लिए, अनवर प्रतापी भाई के लिए, ये हमने कल आपसे वादा किया था। एस गुल ने थैंक्स कह दिया है और हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया और उसके साथ ही एक चीज और भी उनकी जानिब से आई है, वो भी हम शामिल करेंगे कुछ ही देर में। बहना इंतजार करो। और सलाम, कैसे हैं वालिद साहब, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम का है। जरीन नूर शहजादी, बहना कैसी हो? हिना गुल राख ले दीजिए और अस्सलाम वालेकुम। मैंने स्वीट लाला सेंगाई जी, मुश्क और सब सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। यानी अगर हो सके तो स्वीट लाला के नाम अच्छा सा पख्तू संदरा कर दो। ये कौन है यार संदरा लाला को कौन डेडिकेट कर, नाम लिखो नाम। अच्छा जनाब, किसी ने जवाब लिखा है, नाम नहीं लिखा, आपका जवाब भी नहीं पढ़ेंगे हम। नौरीन बहना ने जवाब दुरुस्त लिखा है और ये भी बता दूं, उन्होंने कहा है कि 28.4 लीटर आइसक्रीम फीकस सालाना हर शहरी खाता है। और वंडरफुल लवली सॉन्ग चला मेरा दिल का, सही है आपको ने नाम वशाम भी अपना लिखो, हमने कौन सा चलाया था, दन नन नन नन नन। ये वाला गाना चलाया था ना अभी,
پختو گانے چلایا تھا وہ آپ کو پسند آیا یار یہ تو بہت اچھا بات ہے خیر جی اسی بات پر ہم ایک اور گانے کے جانب جائے گا اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے امام بخش سیال اور انور پتافی بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے پیارے جتنے بھی سندھی بہن بھائی سن رہے ہیں ان سب کو ڈیڈیکیٹ کریں گے ایلو پھڑو

ब्यूटीफुल ट्रैक, क्या बात है भाई, क्या बात है। गाने बहुत सारे चलते रहते हैं हमारे शो में, आप सुनते ही रहते हैं। डिफरेंट इंग्लिश ट्रैक्स भी चलते हैं, पॉप सॉन्ग्स भी चलते हैं, लेकिन जो फोक ट्रैक्स हमारे चलते हैं, चाहे वो सिंधी में हो, पश्तो में हो, सिरायकी में हो, बलोची में हो, उनका अपना एक मजा है, एक अपना ही मजा है यार। हमारा फोक म्यूजिक बहुत रिच है यार, क्या बात है, एक अलग आपको डगर पर ले जाता है, यानी कि समझ रहे ना। तो आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। सोने हो रात को खुशबू लगाकर बाहर जाने से चुड़ैल चिमट जाती है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए तो आप शादीशुदा है। अब आप समझ जाए। अच्छा इन्हें भाई, अगर हो सके तो स्वीट लाला के नाम एक सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। हिना गुल कह रही है साहेबजादा साहब ने चाइना कहा है, तो वैसे हैं बड़े अकलमंद साहेबजादा साहब। दुनिया में जो बड़ी आबादी के दो मुल्क हैं, उनमें जाहिर है लोग भी ज्यादा हैं, तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप मैं कहां जा रहा हूं। और कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा, ये शहजादी बहना जरीन नूर कह रही हैं बिल्कुल कर देंगे। एने भाई नाम लेकर भूल गई, नाम लिखना भूल गई थी कहां पर, अच्छा गाने पर। तो गाना पसंद आ चुका है मतलब आपको, ओके हिना जी दी रहो। वंडरफुल गानो नदीम भाई, मुंजा सोना अदा सही, तवाजी मेहरबानी सही, तवाजो नालो छाए, नालो बुधायो सही। और सलाम नदीम भाई, कैसे हैं, मैं नवाज पार्क रेंजर से, ये भी हमारे नए लिसनर आ गए, जीते रहो। सिंधी आपका शो सुन रहा हूँ, रेंजर्स सिंध से, अच्छा आपका शो सुन रहा हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है सही, बहुत शुक्रिया, जीते रहें मुस्कुराते रहें। नवाज भाई आज तो न्यू लिसनर्स के लिए भी एक गाना होना चाहिए ना, ठीक है ना, और हमारे नवाज भाई के लिए भी होगा, इस तरह तो सही होता है इस तरह के कामों में। और जनाब हाँ जी, अगर कोई आपसे अपने, ये नौरीन बहना का मैसेज पढ़ रहा हूं मैं, कह रही अगर कोई आपसे अपने दिल की बात करता है तो समंदर बने समंदर, अखबार नहीं बने अखबार। वैसे होना तो यही चाहिए, मगर वैसे अखबार बनना तो चाहिए, नहीं बनना चाहिए तो अखबार। वैसे ज्यादातर बनता कौन है, खवातीन होती हैं या मर्द हजरात होते हैं ज्यादातर। और अचानक दिल किया नदीम भाई के मैं भी एक फरमाइश करूं, आज आप फरमाइश नहीं करेंगी मेरी बहन, आज आपका भाई आपको एक ट्रैक डेडिकेट करेगा, यानी कि समझ रही है ना। और सही एक और मैसेज आया है जैन साहब का, ये भी हमारे नए लिसनर हैं, कह रहे जैन, कह रहे वल्ला अंता मालूम के वक्त कलाम अरबी जी, अंता मालूम, इसी बात पर हम जैन भाई आपके लिए एक ट्रैक है, ये जरा सुनिए आप, आपको मजा आ जाएगा, एल्लो फड़ो। और जैन भाई के साथ हम ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे इस्माइल भाई नुमाइश वाले।

Welcome back, beautiful tree. और उम्मीद करता हूँ कि जैन भाई आपको पसंद आया होगा, और हमारे शहजादे इस्माइल भाई नुमाइश वाले अगर सुन रहे हुए तो उनको भी, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ, और आगे बढ़ते हैं जनाब हमारी बहना नौरीन के मैसेज की जाने में। वो कह रही काश तुम ऐसे आओ जैसे कोई दुआ कबूल हो जाए, हाय हाय हाय, जैसे कोई अपना वापस आ जाए, वाह वाह वाह वाह, अरे जैसे उदास दिल को सुकून मिल जाए, जैसे आंखों किसी का इंतजार ना रहे, जैसे खामोशी को कोई समझ ले, हाय हाय हाय। भाई क्या क्या लिखा है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे तन्हाई में कोई साथ मिल जाए, जैसे आंसू अचानक मुस्कुराहट बन जाए, जैसे दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, जैसे जिंदगी भर फिर से अच्छी लगने लगे, जैसे तुम आओ और सब ठीक हो जाए। वाह वाह वाह वाह। अजहन कह रहे शुक्रिया मुअल्लिम हबीबी हबीबी। और आगे बढ़ते हैं जनाब जनाब जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। संजू खामोश क्यों है, आ जाओ तुसी। आज ही लगता है संजू खुश नहीं गी। कोई गल नहीं, संजू दो गाने डेडिकेट होंगे तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, यानी कि समझ रही है ना। इस तरह तो होता है जनाब इस तरह के कामों में। नदीम भाई मैं होटल में चाय पी रहा था, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी, एक मलंग बाबा होटल में एंटर हुए, वो पानी पीने के चक्कर में थे, होटल वाले ने ने ने डांटा, ओ बाबा निकलो, चलो निकलो। मैं अपनी कुर्सी से उठा, बाबा आप ये मेरे पानी की बोतल ले लो। थोड़ी टाइम के बाद मैं होटल से निकला, देखा रश लगा हुआ है, वही बाबा अल्लाह को प्यारे हो गए हो चुके थे और लोग एरी वालों को कॉल कर रहे थे बॉडी उठाने के लिए। साहिबजादा साहब का ये मैसेज है भाई। पहले मैं मुझे ये बताया, मैं सही पढ़ा है उस्ताद जी? अच्छा यार साहबजादा साहब, आप अल्लाह ताला उन बाबा साहब को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। और यार आप ये जो आपने वाकया बताया ना, ये इस वाकये से ऐसा लगता है कि आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से हैं, कि आपके हाथ से किसी ने पानी पिया। शुक्र अदा कीजिए इस हवाले से। मैं आपको ये बात हकीकत बता रहा हूं कि जितना मैंने सुना हुआ है, मैं मतलब बहुत ही अनपढ़ किस्म का इंसान हूं, लेकिन सोबत अच्छी रही है पढ़े लिखे लोगों में, आलिमों में भी रही है, तो जो उनसे बातें सुनता हूं तो उससे जाहिर इंसान को सुन सुन के भी थोड़ा सा तजर्बा होता है। तो ये आपने वाकया तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आप यकीन माने कि ये अल्लाह के पसंदीदा लोगों में ऐसे लोग शुमार होते हैं कि वो आए और आपने उनको पानी पिलाया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बस उनके लिए, उन बाबा के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आपके दिल में ये बात आई। हाय हाय, जज्बाती कर दिया साहिबजादा साहब आपने। चलें फिर, मैं मेरा ख्याल है गाने की जानिब चलते हैं, और ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से आप सबको। सजाद अली का ट्रैक है जनाब, यूसुफ जई साहब देख लें चला दिया अब। हाँ तो, और उसके साथ साथ हमारी प्यारी प्यारी प्यारी सी बहने मेमन कजन्स जितनी भी हैं उन सबको, इरफान मेमन को, सायरा मेमन को और सज्जाद अली सॉन्ग लवर्स को ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे। एल्लो फड़ो।

Welcome back. Kya baat hai? Na bolungi, na bolungi, na bolungi. Sajjad Ali. And I hope you like the track. Hain ji? Te hain ji. मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर और मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं जनाब. एक मिनट एक मिनट. यस जैन कह रहे हैं शुक्रन या मुअल्लिम. आपको एक और गाना दिल कर रहा है आपके मुअल्लिम या मुअल्लिम अंता मुअल्लिम. एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक है अरेबिक का. चले वो फिर कभी सही. और थैंक यू नदीम भाई मोहम्मद नवाज पार्क रेंजर्स से हैं और कह रहे हैं कि पार्क रेंजर सिंध से हैं. ड्यूटी पर हूं आपका शो सुन रहा हूं. यार क्या बात है भाई मोहम्मद नवाज साहब. अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आप मुझे जिस तरह अभी ये मैसेज किया एक और कर दें तो हम अपने भाई के लिए एक अच्छा सा गाना चला देंगे. हमारे आसिफ भाई मुल्ला ने आरे वाले क्या बात है वो भी सुन रहे हैं. परसों मैंने कहा कल या परसों ही मैंने मुल्ला निहारी खाई भाई क्या बात है भाई. और आसिफ भाई ने कड़क कड़क सी रोटियां जो है और निहारी अगर गरम गरम हो और साथ में कड़क सी रोटी हो है जी और निहारी के ऊपर जो है मसाला प्रॉपर तरीके से और फिर आप उसको खाएं हाय हाय हाय मजा आ जाता है भाई मजा आ जाता है. आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया. आसिफ भाई को हम गाना भी डेडिकेट करेंगे. और एक मैसेज आ गया मेरे सामने और शुक्र है कि आ गया लेकिन डर भी लग रहा है भाई. अब जरा पढ़ लेते हैं पहले. इमाम बख्श सहाल साहब कह रहे हैं भाईजान सिंधी सॉन्ग अपनी आवाज में सुनाओ प्लीज प्लीज वरना पुलिस पुलिस. सही आपके लिए गाना चलाया था. चले मैं कोशिश करता हूँ यार सिंधी में एक गाना आपको सुना देंगे. चलो ठीक है यानी कि समझ रहे हैं ना आप. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. तो फिलहाल एक और गाने की जानिब आपको लेकर जाऊंगा और ये ट्रैक हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीर जो है उनको मैंने कहा था. उन्होंने एक गाने की फरमाइश की. मैंने बोला नहीं बहना आज गाना नहीं आपकी फरमाइश नहीं चलेगी आज भाई की जानिब से गाना डेडिकेट होगा. तो ये मेरी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ के लिए एल्लो फड़ो.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। फैज अहमद फैज साहब का कलाम और ये मेरी बहना को बहुत पसंद है इसलिए मैंने चला दिया। हाँ जी कुछ लिख भी दो वो। हाँ जी ते हाँ जी। एनीवे जनाब जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर। प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक। और ये 3 बजे तक हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। और उसके साथ साथ एक सवाल फ्लोट किया हुआ है। सवाल ये है वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई जाती है। और अच्छा जनाब अमीन आ गए हैं चार्ली और कह रहे हैं लाइव आए जाएं आज नदीम भाई कसम कासिम सैफ नाराज हैं आपसे, आपने छोटे भाई का सॉन्ग नहीं चला सके अभी तक। ओ बहुत गिला किया है, मैं कर सकता हूँ नदीम भाई। अमीन भाई आप जो है ना वो लाइव भी आएंगे और आप के हम कासिम भाई का गाना भी चलाएंगे आज। चले आज आपकी जानिब से चलाएंगे ठीक है। लवली कह रहे हैं कि नदीम भाई अंता मालूम फीमेल सॉन्ग जो हबीबी से पहले बीजीएम होता था वंडरफुल सॉन्ग है, जब आप का दिल करे प्ले कर दीजिएगा प्लीज। लवली मैंने ये तो उनको जैन को कहा था भी, मैंने कहा था फिर बाद में चलाएंगे तो वक्त अगर मिला तो जरूर। अभी आप लोगों की फरमाइशें बाकी हैं यार बहुत सारी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर हम बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे संजू को, प्यारी सी बहना जरीन नूर की जानिब से और अदीला की जानिब से। तो जरीन संजू ट्रैक जरा सुनिएगा। हैं जी जी हैं जी।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको माही वे तेरी याद आती है वही ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। और नौरीन मैंने क्या कह रही है फुल वॉल्यूम करके सुना वाओ मजा आ गया चंगो भलो डाटो सुठो हर किसी का ख्याल रखते हैं नदीम भाई बहन की तरफ से ढेरों दुआएं जीती रहे आपके लिए भी ढेरों दुआएं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम सर जी थैंक्स फॉर नाइस शो नाइस सॉन्ग सर अगर हो सके तो प्ले कीजिएगा नूर जहान की आवाज में आचन माही दवा प्यार करें दोवें प्यार करिए सलामत रहें खुश रहें इमरान राणा राणा साहब इतनी देर से यानी कि ढाई बज चुके हैं भाई तकरीबन कह रहा हूं तो कोशिश करेंगे पक्का वादा नहीं है भाई क्योंकि दो बजे के बाद तो शो के एक घंटे के बाद जो है फरमाइशें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं क्योंकि पहले से ही इतनी ज्यादा जमा हुई होती हैं कि तुहानु दास नहीं सकते यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा जी मोहतरम अख्तर भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा मैसेज और सजा दिल की आवाज सुनाया दिल की गहराइयों से शुक्रिया आए हाय इतनी दुआएं मेरे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब क्या बात है आपकी। और जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहना का भी मैसेज आ गया है और कह रही है थैंक्स।

इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और खुशबू अर्श खुशबू कह रहा हूँ आइसक्रीम, कल से खुशबू दिमाग में समाई हुई क्योंकि काफी अरसे से खुशबू लगाई नहीं है ना। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई हमारे प्यारे से कहाँ गए इमाम बख्श साहब। इमाम बख्श ने क्योंकि धमकी दे दी है मुझे बड़ी खतरनाक वाली, और उन्होंने कहा कि भाई अगर अपनी आवाज में नहीं सुनाया ना तो यानी कि समझ रहे हैं आप, तो एक कोशिश है जैसे कल की थी मैंने कोशिश अपनी आवाज में, तो ये कोशिश अगर मुझे बीच में लगा इमाम बख्श साहब ये आपकी मोहब्बत में थोड़ा सा सुना रहा हूँ अपनी आवाज में, थोड़ा सा ही सुना सकूंगा पूरा नहीं सुना सकूंगा। तो कहाँ ये भाई चल भी जा, ये चल ही नहीं रहा भाई गाना, कहाँ गया

और भाई बहुत ऊंचा सुर था यार, मुश्किल से गाया भाई, बड़ी गले का बैंड बजिया।

और जनाब ये ट्रैक आपके लिए था भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब जनाब मैसेजेस देखते हैं, कोई आया है, आया है, आया है। और थानिया हसन जी भी आ गई हैं, क्या बात है भाई, कैरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई अभी इसी बात पर हम एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब जाएंगे, और ये ट्रैक कहाँ गया, कहाँ गया, इंग्लिश ट्रैक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और माहौल जो है वो बहुत जबरदस्त सा हो जाएगा। अदीला भैना का मैसेज आया है और कह रही है थैंक्स फॉर सॉन्ग गुड सिंग। जीती रहो मेरी प्यारी सी भैना। तो जनाब अभी जिस ट्रैक की जाने मैं जा रहा हूँ, स्पेशली जो इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं उनको डेडिकेट करूंगा, खुसूसी तौर पर एक मेरी प्यारी सी खामोश बहना जो है मिसेस फारूक, वो सुनती हैं, हो सकता है आज भी सुन रही हूँ, तो उनको भी डेडिकेट करूंगा, और उसके साथ साथ अरूसा को भी डेडिकेट करूंगा, और उसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं उन सबको डेडिकेट करूंगा। एंड हियर वी गो। कैसे हेयर वी गो होगा भाई, फेडर तो ऑन ही नहीं है। तो जनाब एलो फड़ो। सॉन्ग इज चूज इन टैक्सेस, इट्स अ कंट्री सॉन्ग।

ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। और ये आपको बताऊं कि टॉप चार्ट में इस वक्त ट्रैक चल रहा है एला लैंगले का। और कंट्री सॉन्ग्स का एक अपना मजा है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले अपने फोक म्यूजिक के हवाले से, पाकिस्तान के फोक म्यूजिक के हवाले से बात की थी, तो ये समझ लीजिए कि ये अमेरिका का फोक है कंट्री सॉन्ग्स, और मुझे बड़ा पसंद है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। और कंट्री सॉन्ग्स में जो है ब्लेक एक बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, शनाया ट्वेन तो क्या बात है, और अब मैंने इनको सुना है तो मुझे अच्छा लगा है लैंगले को एंड चूज इन टेक्सस एंड आई होप यू लाइक इट। एंड इमाम बख्श साहब कह रहे हैं, इमाम बख्श सयाल थैंक यू रनी भाई, आपने अपनी आवाज में सॉन्ग सुनाया। यार आपने धमकी ऐसी दी थी, मैं डर गया था भाई, फुल टाइम डर गया था। और फैसलाबाद में तो बहुत गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है नदीम भाई, मौसम अब चेंज हो रहा है बिल्कुल। अब सिलसिलाकार ये है कि पिछले तकरीबन दो तीन दिन से कराची में मौसम खुशगवार नहीं कह सकते, दिन को काफी गर्मी रहती है और रात को हल्का फुल्का हब्स होता है, लेकिन ऐसे जैसे गर्मियों में, शदीद गर्मियों में जो बुरा हाल होता था वो वाला नहीं है। बट ऐसा सच ये भी नहीं कह सकते जी कि मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी है कराची में। और ऐसा अक्सर होता है कि पंजाब में शदीद गर्मी हो रही होती है और कराची में मौसम बड़ा अच्छा होता है। एंड पंजाब में अब जाहिर है सितंबर भी अपना आधा सफर तय कर चुका है और अब इख्तिताम वाला सिलसिला उसका चल रहा है, 17 हो चुकी है, तो जाहिर है वहां पर मौसम अब पंजाब साइड पर मौसम जो है वो चेंज होना शुरू होगा। तो अब ये हो रहा है चेंज, अच्छी बात है, गुड न्यूज। सवाल जो मैंने किया था एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हो उनको बता दूं जनाब, ये सवाल मैंने ये किया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम कहां खाई जाती है। यार वैसे आप ये भी कह सकते थे आइसक्रीम पार्लर्स में खाई जाती है लेकिन मैंने मुल्क पूछा है, इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में। अच्छा भाई, हमारे आसिफ भाई मुल्ला निहारी वाले वो भी सुन रहे हैं, उनको अली जफर बड़ा पसंद है, तो अली जफर का गाना जो है उनको डेडिकेट करना है मैंने, और अपनी पसंद का ही करूंगा भैया। अली जफर के तो वैसे बहुत अच्छे अच्छे से गाने हैं, लेकिन क्योंकि अब मौसम माहौल कह लें, मौसम कह रहा हूं मैं, माहौल जो है वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, तो इस वजह से गाना भी अली जफर का कुछ ऐसा ही चलाएं जो अच्छा लगे आप सबको और मेलोसा हो। लेकिन उससे पहले, अली जफर के गाने से पहले, अभी एक डेडिकेशन भी है जनाब, और वो डेडिकेशन है जनाब रूहे जान और रूहे मन के लिए, तो आपके लिए गाना है, हेलो पढ़ो

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो
1: अभी तो रात बाकी है।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। जनाब वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है यार, है जब मूड ऐसा ऐसा सेट होना शुरू होता है तो जनाब वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त फुर्र करके उड़ जाता है। हमारे सलीम मेमन भाई कहते हैं कि सुने हो अली जफर मेरे दोस्त हुज़ैफ़ा आसिफ को भी बहुत पसंद है। अरे ये हुई ना बात, उनको भी डेडिकेट कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे सलीम मेमन भाई, आप अचानक जो है खामोश ही हो जाते हैं, चार पांच लतीफे भेजे और उसके बाद खत्म। भाई चुड़ैल वाली बात जो है वो मैंने मजाहतन की थी, हर इंसान के साथ ऐसा है, लेकिन बस मजबूर है शौहर के, बोल नहीं सकता कि उसके साथ क्या चिपका हुआ है। ऐसा है ना जिंदगी में ऐसा ही है, हजारों बातें ऐसी होती हैं भाई। ये मियां बीवी के हवाले से सलीम मेमन भाई के, जो बीवी भी नहीं कर सकती और मियां भी नहीं कर सकता, मियां बेचारा मजलूम होता है कहा जाता है वैसे, और वाकई में ऐसा होता है। और औरत जो है ना वो दिलेर हो जाती है फुल टाइम शादी के बाद। जा कहां रहा है भाई, इधर तो आ जरा, उसको पता होता है जहां भी घूम फिर कर आना है इसने घर पर ही। और जब बच्चे माशाल्लाह से हो जाते हैं तो फिर वो शेरनी बन जाती है और आदमी जो है उसका बैंड बज जाता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जी, मैंने एक सवाल किया आपसे और सवाल ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई जाती है ठंडी ठंडी। अब तो जनाब पंजाब साइड पर हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने बताया है कि वहां पर जो है मौसम अब तब्दील होना शुरू हो गया है। और वैसे इस बात की तस्दीक भी मैं करूंगा क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो लाहौर में रहता है, तो कल मेरी उससे बात हो रही थी तो वो कह रहा था नरीम भाई अब हल्की हल्की खुनकी शुरू हो गई है, पंखों में फील हो रहा है, ये यानी कि सर्दी की आमद आमद। तो सर्दियों में मुझे आइसक्रीम खाना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आइसक्रीम के हवाले से मैंने आज सवाल किया तो पता नहीं क्यों ऐसा मूड हो रहा है यार, आइसक्रीम खाई जाएगी जाकर। अभी ठहरो, बड़ा अच्छा गाना है वैसे ये। वैसे अगर आप लोगों को ये गाना अच्छा लगता है तो बताइए गाया किसने, ये कई दफा सुना होगा आपने मुख्तलिफ चैनल्स में, नहीं पता होगा आप लोगों को लेकिन आप लोगों ने बताना है। एनीवे तो जनाब मैंने सवाल ये आपसे पूछा था कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई जाती है, तो इसका जवाब दुरुस्त सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने दिया था जनाब, और उन्होंने बड़ा तफसील से जवाब दिया था कि न्यूजीलैंड है वो मुल्क है जहां पर आइसक्रीम सबसे ज्यादा खाई जाती है। तकरीबन 28.4 लीटर आइसक्रीम, 28.4 लीटर आइसक्रीम मतलब फीकस आदमी जो है वो सालाना खाता है, मतलब एक साल में 28.4, यानी कि आप ये समझिए कि अगर महीने में 2 लीटर भी आइसक्रीम खाता है तो 24, मतलब महीने में 2 लीटर आइसक्रीम, ओए होए होए, 2 लीटर से ज्यादा, तकरीबन 2 लीटर से ज्यादा आइसक्रीम एक महीने में खाई जाती है, एक इंसान खाता है। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आइसक्रीम तो खैर आइसक्रीम है यार, आइसक्रीम का तो मजा वैसे ही है। ये वो एक मैंने जैसे कि शुरू में शो के आगाज में बताया था कि खाने की चीज है ये कि जिसको हर उम्र का इंसान जो है वो बेहद पसंद करता है, बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक, बूढ़े भी बड़े शौक से खाते हैं। तो अब आपने एक काम करना है कि जो भी पसंदीदा आइसक्रीम हो, अभी तो रात का पहर बहुत हो गया है, अभी का तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि कल आप लोग जरूर, मर्द हजरात से कह रहा हूं कि अपने घरों में आइसक्रीम लेकर जाना और सब मिलकर खाना, अच्छा लगेगा बड़ा। तो जनाब अली जफर का जिक्र हुआ है तो अली जफर का एक गाना हो जाए ये ट्रैक, जनाब हमारे प्यारे से आसिफ भाई मुल्ला निहारी वाले, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हुज़ैफ़ा भाई को भी बड़ा पसंद है भाई, हुज़ैफ़ा को, ये अली जफर साहब, तो हुज़ैफ़ा भाई को भी हम डेडिकेट करेंगे, सलीम मेमन को भी डेडिकेट करेंगे। ब्यूटीफुल ट्रैक, हियर वी गो।

welcome back. दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों. ब्यूटीफुल ट्रैक और ये अली जफर की आवाज आपने सुनी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी. और हमारे प्यारे से सलीम मेमन साहब कह रहे हैं कि यार सुने हो मुल्ला नेहारी की बड़ी तारीफ सुनी है, ये कहाँ पर है. मैंने सोचा कि मैं भी जाकर खा लूं. भैया मुल्ला नेहारी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं वो है गुलशन इकबाल मुमताज मंजिल पर. पहुंच जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए, हसन स्क्वायर के पास है, कि मुल्ला नेहारी गाए तो आपको यानी कि समझ रहे हैं ना, बता देंगे, कोई ना कोई बता देगा, मशहूर है. खाइएगा फिर आसिफ भाई, वसी भाई को बताइएगा जरा, आ रहे हैं भाई सलीम मेमन भाई. तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में. वक्त बड़ा महदूद सा रह गया. हमारे अमीन भाई ने कहा है कि भाई कासिम साहब जो है वो नाराज हैं कि उनका हमने गाना नहीं चलाया. तो हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर भी हैं कासिम भाई, उन्होंने एक गाना बनाया है मेरी वफाएं. तो वो गाना जो है अमीन भाई की जानिब से, कासिम भाई की जानिब से आप सबके लिए.

वेलकम बैक जनाब, और मुझे यकीन है कि हमारे कासिम साहब जो है वो खुश हो गए होंगे, उनका ट्रैक चला है जनाब, यानी कि समझ रहे हैं ना आप जनाब। अब साइन आउट का वक्त भी हो गया है और उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी लिसनर्स जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी फरमाइशें पूरी हो गई हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा जरूर है कि बहुत से ऐसे भी लिसनर बीच में आए कि जिन्होंने तकरीबन 2:30 बजे के बाद फरमाइश की थी, तो हो सकता है कि उनकी फरमाइश जो है वो पूरी ना हुई हो। तो अब आप से इजाजत चाहेंगे, मुलाकात इंशाल्लाह ताला आपसे होगी कल, और कल क्योंकि है जुमेरात, बज़्मे गज़ल बज़्मे शायरी, वैसे बज़्मे गज़ल तो नहीं कहूंगा मैं, बज़्मे शायरी जरूर कहूंगा। उसके साथ साथ बड़े लाइट मूड में ये प्रोग्राम होता है और इसमें मेलो से गीत भी चलते हैं, अच्छी शायरी वाले गीत भी चलते हैं, साथ में गजलें भी साथ साथ सिलसिला होता है, और आप लोग अपने पसंदीदा जो है वो शायर शायरी के जो इंतखाब जो हैं वो मुझे भेजते हैं, वो मैं शो में शामिल करता हूँ। दिल की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, और मैंने कल के शो में जो खुशबू के हवाले से बात की थी, तो कल हम दिल के साथ जो है वो खुशबू को भी जोड़ देंगे। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दरगुजर करना जो है ना, ये एक लफ्ज तो बड़ा अच्छा लगता है हर इंसान को, और इस हवाले से हम समझाते भी हैं हर एक को, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि ये आसान क्यों नहीं है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं ना दरगुजर करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों जो आपके गिर्दो निवाह में जो लोग होते हैं वो कोई भी बात करते रहें, ठीक है ना, तो आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर कोई आपको बुरा भला भी कहता है तो आप बोलते कहता रहे भाई अपने काम से काम रखे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दिल को तकलीफ ज्यादा इस वजह से होती है कि जब कोई आपके करीब हो, आपका अपना हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, और वो आपका काबिले एतमाद भरोसामंद दोस्त हो, और जब वो आपको पता चले कि वो आपका दिल दुखा रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर दरगुजर करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि दरगुजर करना, माफ करना जो है वो जरूरी है। एक बहुत ही प्यारा सा एक कॉल भी आपको मैं बता देता हूं, और वो ये है कि अक्सर जो है ना वो जो डसा हुआ जो होता है ना, वहां पर दोबारा मत जाओ जहां से तुम्हें दोबारा डसा जाए। तो खामोशी सबसे खूबसूरत जो है तरीका कार है इस हवाले से, ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, जाहिर है हर इंसान का अपना अपना तजर्बा होता है। तो बस ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए कि जो आपको जहनी और दिली और माली किसी भी तरह का कोई आपको अजियत पहुंचा रहे हो, तो कोशिश किया करें कि उनसे दूर हो जाएं। इस पैगाम के साथ ही चाहूंगा आप लोगों से इजाजत, और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, सज्जाद अली की आवाज है, वो आप लोगों के नाम कर रहा हूं अपनी जानिब से। अल्लाह हाफिज़।